ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जब लड़की सीटी बजाए क्या बात है। महान संगीतकार द ग्रेट बाप्पी लहरी के साँच पर इन दी वर्क का जो अल्फासे था, और क्या बात है, इतनी खूबी से किशोरदा और एस जानकी ने आप सभी को सुनाया। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी धर्म अधिकारी नीति सेशन तख्त, और इस बार आप सुनेंगे क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। साथ दे रहा है ग्रेट सिंगर फ्रॉम द 80s द ग्रेट शबीर कुमार जी, एक तो कम जिंदगानी।

वापस सभी के खिदमत में पेश किया गया एड फिल्म धर्म अधिकारी बप्पी लहरी के साज और संगीत पर मिशन दृक्फाउ चमा जैसे किशोर दा के मधुर आवाज और आशा भोसले जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। पत्थर के इंसान फ्रॉम द सेम मूवी आप सुनेंगे धर्म अधिकारी से बप्पी लहरी के साज पर और मशहूर गायक फ्रॉम द 80s मोहम्मद अजीज और साथ दे रहे हैं क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल दोनों आवाजों में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कंपोज बाय बप्पी लहरी।

What a great song from the movie Dharam Adhikari, O Patthar Ke Insaan. Mashoor Gayak from the 80s, Mohammad Aziz, Saath De Rahi Thi, Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle Ji, Pappi Lahri Ke Saanch Par. तो दोस्तों वक्त हो चुका है कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। और फरमाए अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ ताजे ताजे शेर्स भेजे हैं दोस्ती के बारे में। कहा है कि आपकी दोस्ती पे नाज है हमें, आपकी दोस्ती पे नाज है हमें, कल था जितना भरोसा उतना आज है हमें। दोस्त वो नहीं जो खुशी में साथ दे, दोस्त वो नहीं जो खुशी में साथ दे, दोस्त वही जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। क्या बात हुआ। फूलों को महकना सिखाने चले, फूलों को महकना सिखाने चले आप, इन हवाओं को रुख बताने चले आप, हम बहाने ढूंढते हैं दोस्तों पर मर मिटने का यारो, हम तो बहाने ढूंढते हैं दोस्तों पर मर मिटने का, दोस्त है कि हमें दोस्ती सिखाने चले। खुशियों पर फिजाओं का पहरा था, खुशियों पर फिजाओं का पहरा था, ना जाने किस उम्मीद पे दिल ठहरा था। तेरी आंखों से झलकती दर्द की कसम, तेरी आंखों से झलकते दर्द की कसम, ये दोस्ती का रिश्ता प्यार से गहरा था। मेरी दोस्ती की कीमत क्या आजमाइश कर सकोगे, मेरी दोस्ती की कीमत क्या आजमाइश कर सकोगे, जान से ज्यादा क्या फरमाइश कर सकोगे, मेरी दोस्ती है समंदर की पानी की तरह, मेरी दोस्ती है समंदर की पानी की तरह, क्या कभी उस पानी की पैमाइश यानी अंत कर सकोगे, क्या आप इस दोस्ती को कभी खत्म कर सकोगे। नामुमकिन है, नामुमकिन है। दोस्तों के बिना जिंदगी फजूल है, सही बात है यारो, दोस्तों के बिना जिंदगी फजूल है, पर दोस्ती के भी अपने कुछ उसूल है, कहते हैं दोस्ती में भी तकलीफ मिलती है, पर आप हो दोस्त तो सब कुछ कबूल है। अपनी तकलीफ में मुझे उम्मीद समझना, अपनी तकलीफ में मुझे उम्मीद समझना, कोई गम आए तो अपने नज़दीक समझना, दे सकूं हंसी उस आंसू के बदले, दे सकूं हंसी उस आंसू के बदले, तो हजारों के बीच मुझे सबसे करीब समझना। क्या किस्मत से मिले हो मुझे यूं छोड़ के ना जाना, किस्मत से मिले हो मुझे तुम यूं छोड़ के ना जाना, कोई अपना सा लगा है देखा सारा जमाना, यूं ही चलता रहेगा खुशी और गम, यूं ही तो चलता रहेगा खुशी और गम का आना जाना, बस हमारे साथ रहे तुम्हारा यार आना। तो था कुछ दोस्ती का शेर से जो मैंने आप सभी को सुनाया, या उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगला बयान फ्रॉम द मूवी धर्म अधिकारी, और साथ ही साथ आखिरी बयान है फिल्म धर्म अधिकारी का, और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर महान गाने वाली क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी।

बेटे से धुन दबाकर भाग निकले। भागे नहीं, हार गए। हारे हुए सिपाहियों पर गोरा अफसर बरस पड़ा और कहा, सामने से नहीं तो पीठ में छुरी मारो। जीत की खुशी में सोए हुए गांव पर फिर

फ्रॉम द मूवी धर्म अधिकारी बप्पी लहरी के साज पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना अश भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथियों के साथ। हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी गाने फिल्म धर्म अधिकारी का जो रिलीज किया गया था निगेटिव सेशन तक में आप सुने। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था निगेटिव सेशन तक में, फिल्म कर्मा। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, और अपने जवानी में क्या खूबसूरत थी, मिस इंडिया भी वो थी आर फैक्टर द ग्रेट नूतन जी के साथ। जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में काम किया है, मलकाय हुस्न श्रीदेवी जी, द ग्रेट एक्टर अनिल कपूर जी और ब्यूटीफुल पूनम ढिलन जी, मधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह। जबरदस्त कास्ट था इस फिल्म का। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आप सुनेंगे आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान, देशभक्ति सॉन्ग है और सुनाकर जा रही है आप सभी को मशहूर गाने वाली फ्रॉम द 80s 90s द ग्रेट कविता कृष्णमूर्ति जी। साथ दे रहा है महान गायक फ्रॉम द 80s द ग्रेट मोहम्मद अजीज जी, ए वतन तेरे लिए।

0: मेरा कर्मा है तू, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनाए आप सभी को पुराने जमाने 80s का तीन मशहूर गाने वाले फ्रॉम द 80s 90s, मोहम्मद अजीज सुरेश वाडकर और मनहर उदास, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांच पर आप सभी को सुनाया। अल्फाज थे आनंद बख्शी जी का। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आप नगमे सुन रहे हैं यार तख्त, और ये भी खास करके जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। हम पहुंच चुके हैं फिल्म कर्मा जो रिलीज किया गया था 1931 तख्त, उसी फिल्म में से आप सॉन्ग्स सुन रहे हैं। अगला बयान ऐ सनम तेरे लिए, फिल्म कर्मा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर अब सुनाने को जा रहे हैं। आप सभी को श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि दिलीप कुमार जी एक बहुत ही बेहतरीन गायक भी था, तो उन्हीं के मधुर आवाज में मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे।
1: बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।

Ej, se nëm të redje, ej du felëm karmani këtin 86, Dilip Kumar Muhammad Aziz Aurka Vita Krishna Murti ke awaz me ti sundar bayan aap shrotaon ne suna composed by maestro Lakshmi Kant Pyare Lal tumhari pipri shrotao waqt ho chuka hai vigyapan aur desh videsh ka samachar ke तभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है आप ही का आवाज है जनता का आवाज है ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो कहीं जा

रेवे प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अब चुने द प्लस रेडियो पर एनाटिक उक्त बुलेस्टर फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आप तमाम श्रोताओं को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में हमारे फुल टीम की तरफ से। टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में आना तुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत फॉर एट लाइस्टरन। एक बार फिर से स्वागतम आप सभी को कार्यक्रम में और फूल टीम की तरफ से आप सभी को नतीलिक इल्फी लाइस्टर प्लेजीर पेश किया जा रहा है। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट और खालिसातर हो, ऑर्गामन हो, ऑर्गावुमन, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो, तो देखना कैसे चमकार पे चमकार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। और जितने बार चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आसमां कर तो देख, सभी जानकारी नया नंबर दिया गया है 9723356898 पर आप तार करें, या तो आप 9723562047 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेल फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेल तेरेंस कांतोर यूरो ऑफ 9723356898 ऑफ ऑफ 9703562047। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में बातें शाते भी करते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के ओर। और जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, बीते हुए सप्ते आप सुने फिल्म कोहिनूर जो रिलीज किया गया था 1960 के नगमे, और वो सभी मैं आप सभी को सुना चुका था। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक ब्लॉकबस्टर मूवी जो रिलीज किया गया था 1960 ऑल्सो, मुगले आजम, दिलीप कुमार और मलकाय हुस्न मधुबाला जी का ये सुपरहिट ब्लॉक बस्टर मूवी में से आप नगमे सुनेंगे। संगीतकार है महान संगीतकार द ग्रेट ग्रेट ग्रेट नौशाद अली जी, और नगमे इस गाने के जितने हैं सभी लिखे हैं महान लेखक शाकिल बादायूनी। तो फिल्म मुगले आसम में से नगमे आप सुनेंगे। एक नगमा है जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था उस मूवी में, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी नौशाद अली के साज पर ग्रेट सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या, एवरग्रीन सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

हाय मास्टर नौशाद अली, प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म मुगले आजम 1960, जबरदस्त मूवी उस जमाने का साबित हुआ था ये अति सुंदर मूवी। और उसी फिल्म में से नगमे आप सुन रहे हैं लता जी के मधुर आवाज में कोरस के साथ। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी मुगले आजम, एक बार फिर भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज में, जब रात है ऐसी मतवाली। शाकिल बदायूनी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कॉम्पोज बाय नौशाद जी।

Hey, Aishi Matwali, beautiful song, Bharat Ratna Queen of Melody, Lata Mangeshkar Ji ki awaaz mein, aid film Mughal-e-Azam, composed by Naushad Ali. Agla bayan ki taraf badhte hain yaro, ek aur aid same movie Mughal-e-Azam, aur फिर एक बार क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस मूवी में लता जी ने गाने गाई है, तो मिलके सुनते हैं खुदा नेहगबान हो, कंपोज बाय नौशाद जी।

Beautiful song, masterpiece of composing by maestro Naushad Ali from the movie Mugliazem, 1960. Letterjike, beautiful awaaz me. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई कुछ ताजे ताजे लिखकर भेजे हैं दोस्ती के बारे में कुछ शेर शायरी। जिन्हें चाहो दिल से उन्हें दिल के पास रखना, जिन्हें चाहो दिल से उन्हें दिल के पास रखना, हर पल हर मोड़ पर इन्हें खास रखना। नाजुक होते ये दोस्ती के रिश्ते, नाजुक होते हैं ये दोस्ती के रिश्ते, कभी टूट ना जाए इसलिए इन पे विश्वास रखना। रिश्तों की डोरी कमजोर होती है, आंखों की बातें दिल की चोर होती है। खुदा ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब, खुदा ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब, हमारी उंगली आपकी ओर होती है। हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप। तेरे साथ गुजरा लम्हा जब भी याद आएगा, इस जन्म के बाद भी तेरा ख्याल आएगा। अगर बख्शी बार बार जिंदगी ऊपर वाले ने मुझे, अगर बख्शी बार बार जिंदगी ऊपर वाले ने मुझे, तुझसे दोस्ती करने को हरदम जी चाहेगा। क्या बात है, पल भर में टूट जाए वो कसम नहीं, अपने फ्रेंड को भूल जाए वो हम नहीं, तुम हमें भूल जाओ इस बात में भी दम नहीं, क्योंकि तुम हमें भूल जाओ इतने बुरे हम तो नहीं। हसरतों की निगाहों पर सख्त पहरा है, हसरतों की निगाहों पर सख्त पहरा है, ना जाने किस उम्मीद पर दिल ठहरा है। तेरी चाहतों की कसम ऐ दोस्त, तेरी चाहतों की कसम ऐ दोस्त, अपनी दोस्ती का रिश्ता तो प्यार से भी बड़ा होता है। इन अंधेरों के लिए कुछ आफताब मांगे हैं, दुआ में हमने फ्रेंड्स कुछ खास मांगे हैं, जब भी मांगा कुछ रब से तो आपके लिए खुशियों का पल मांगे है। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के कार्यक्रम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने के लिए। अगला बयान एक बार फिर लता जी के मधुर आवाज में, जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, इस मूवी में मुगले आसम में सबसे ज्यादा गाने लता जी के आप सुनेंगे। मोहे पनघट पे ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय मैस्त्रो नौशाद अली एंड द सॉन्ग इज रिटन ऑफ कोर्स बाय शाकिल बारायूनी। मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग। और क्या गला थी उस जमाने में लता जी के।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है मोहब्बत के झूठी कहानी पे रोए एंड फिल्म मुगले आजम 1960 शाकिल बारायूनी का लिखा हुआ है। सुंदर बयान कंपोज बाय म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली और सुना दिया आप सभी को भारत रत्न लता मंगेशकर जी। हमें काश तुमसे मोहब्बत फ्रॉम द मूवी मुगले आजम एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी नौशाद अली के साज पर शाकिल बादायूनी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

दर्द से भरा हुआ अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म मुगले आजम ने तख्त नौशाद अली के साथ पर शाकिल बारायूनी के अल्फाजे लता जी के मधुर आवाज में। ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले, एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के मधुर आवाज में। एड फिल्म मुगले आजम कंपोज बाय नौशाद अली, अल्फाज है शाकिल का।

हमारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है।

मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा। प्यारे प्यारे भाई बहनों, आपको बतलाने जा रहा हूँ लक्ष्मी के बारे में। आप लोग, हम लोग सभी लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं मित्रों। हम पीछे कब रहे हैं? हम तो आपसे 10 कदम आगे हैं मित्रों। लोग कहते हैं किसी तरह से भी पैसा आए, हम तो इस तरह के आदमी हैं। कभी लोग कहते हैं ना, तो केवल लक्ष्मी की साधना करने से मित्रों वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, परंतु उलक वाहिनी लक्ष्मी आएगी। मित्रों ध्यान करना, महालक्ष्मी के 3 प्रकार के वाहन हैं। एक उल्लू पर आती है जिसको उलुक वाहनी कहते हैं, और एक गज पर आती है जिसको गज वाहनी कहते हैं मित्रों, और एक भगवान के गरुड़ पर आती है उसे गरुड़ वाहनी कहते हैं मित्रों। अब अकेली लक्ष्मी की यदि हम साधना करेंगे तो वो उलुक वाहनी के रूप में आएंगी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि स्वतंत्र होकर आएगी। जब बिना नारायण के आएगी तो चंचला बन के आएगी और उल्लू की सवारी पर आएगी मित्रों। आजकल साधारण मंत्रियों के आगे पीछे अनेक गाड़ियां होती हैं, तो क्या लक्ष्मी महारानी के साथ में उसकी फौज नहीं चलेगी? बताइए ना, अवश्य चलेगी। उनके साथ एक सेना नायक रहते हैं, सेनाधिपति, और सेना के तो गिनती नहीं, पर एक तो है ही, एक सेना नायक होते हैं उसके। इस नगरी के भी एक दरवाजे हैं मित्रों, दरवाजों पर उनके पहरेदार खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी के आते ही उसको उसका वाहन होता है उल्लू। उल्लू कहता है कि माई पहला काम तो मुझे करने दो। माई कहती है हाँ हाँ हाँ, कर ले जो करना है कर ले, खाना पीना जो है सो कर ले कर ले मित्रों। वो उल्लू घर में आते ही मनुष्य की बुद्धि को उल्लू बना देता है, उल्लू बना देता है। आप विचार करें उल्लू कैसे बन गए, हम तो मनुष्य हैं। परंतु जैसे ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है तो घर की बहन बहू बेटियां मैम हो जाती है, सब मैम हो जाते हैं, मफरौ हो जाते हैं, और फिर मफरौ ही नहीं रहती, उनके बच्चे उनको मॉम कहना शुरू कर देते हैं। माताजी नहीं, अब मॉम मॉम है, जो कि विदेश में मोम मृत शरीर को कहते हैं, मम मृत सर मरे हुए आदमी को कहते हैं शरीर को। तो हमारी संस्कृति नष्ट होने लग जाती है मित्रों, और मनुष्य उल्लू बन जाता है। कैसे बन जाता है? यही कि बड़ा घर बड़ी है जो 21 दिन होटल से खाना खाए, नहीं तो घर है ही नहीं जब तक होटल से खाना ना आए मित्रों। जब तक वो 4-4 क्लबों का मेंबर नहीं बन जाता तब तक बड़ा घर मान्य नहीं होता। आज की संस्कृति में सज्जनों बड़े साहेब साहेब बड़े घरों के क्या कहने, फला क्लब के मेंबर है, अनेक क्लब का मेंबर है, क्लबों में 2-2 घंटे
तीन तीन घंटे चार चार घंटे तो लगाते ही हैं ये सब। वे 9-10 बजे क्लबों में जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठने के समय में क्लब से आते हैं। जैसे उल्लू रात को जागता है और दिन में सोता है, ऐसे लोग हैं ये काफी पैसे वाले। उसी तरह से आज के हमारे धनवान लोग, पैसे वाले व्यक्ति जो अपने आप को सर्वोपरि सेठ कहते हैं, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। जबकि हमारे शास्त्र का मत है कि चक्रवर्ती महाराजा दशरथ भी 4 बजे जग जाया करते थे। मित्रों, राम के पिताजी 4 बजे सुबह जाग जाते थे। और आज के राजा यानी सेठ धनवान लोग रात भर क्लब में रहकर अपने समय को दुर्व्यसनों में लगाते हैं, पाप में लगा देते हैं काफी। मैं दुर्व्यसनों तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने क्लब देखा नहीं है। मित्रों, हो सकता है वहां रामायण के अखंड पाठ होते हैं, हो सकता है गुरु ग्रंथ साहेब के पाठ होते हो सकता है वहां माला भजन होता हो, और हो सकता है वहां परमात्मा की पूजा होती हो। मित्रों, ये तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वहां क्या होता है, पर परमात्मा का पूजन तो यूं नहीं लगता कि वहां से निकलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती है। मित्रों, ऐसे मालूम पड़ते हैं कि बहुत पीटे गए हैं, वे बहुत पीटे गए हैं, पिटाई खाकर आए, ऐसे चेहरे नजर आते हैं इन लोगों का। क्लब में से निकल कर जब आते हैं तो भगवान के भजन में तो प्रसन्नता आती है मित्रों, और इन लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो पीटे गए हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, वो उल्लू बन गया और उल्लू के बाद फिर सेना कहने लगी कि हम पीछे क्यों रहे जी। बोली, हाँ, तुम भी अपना काम करो। उनकी सेना का नाम है बाजीकरण। मित्रों, जिस घर में केवल लक्ष्मी का आगमन होता है उसी का सत्कार है अकेले का। तो मेरे भाई बहनों, जुएबाजी, ताशबाजी, मुकदमेबाजी, शराबबाजी, कबूतरबाजी, रंडीबाजी, ये बाजियां उस घर के अंदर आ जाती है अकेली लक्ष्मी की वजह से। और जब ये बाजियां आ जाती है तो लक्ष्मी चली जाती है पर नाम दे जाती है, बहुत सुंदर नाम दे जाती है उस आदमी को। क्या नाम धर जाती है? उल्लू का पट्ठा। ये नाम दे जाती है उल्लू का पट्ठा है। जब तक रही उल्लू बनाया और जाते समय उल्लू का पट्ठा बना गई तो लोग कहेंगे कि उल्लू के पट्ठे पर संभली नहीं, बेवकूफ का पट्ठा, उल्लू का पट्ठा, गधे का बच्चा, कई नाम बन गई उसके। मित्रों, इसीलिए मेरे कहने का भाव ये है कि लक्ष्मी की हमें जरूरत तो है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना एक सेकंड हम नहीं चल सकते। धर्म ग्रंथ जिसमें परम विद्वान मार्कंडेय जी महाराज ने कहा है कि हे महामाया श्रीदेवी, आप पापियों को पवित्र बना देने वाली हो और
निर्बुद्धियों को बुद्धि प्रदान करने वाली हो। कुल खानदान की लज्जा आपके ही हाथ में है, योग भी आपके ही हाथ में है। योगी भी योग तभी कर सकता है जब तुम्हारी कृपा हो। वो केवल पैसे से ही नहीं कृपा करती है मित्रों, कृपा भी करती है। योगियों के चित्त में जो चेतना पैदा करने वाली है वो श्रीदेवी ही है। तो धन से, आशीर्वाद से और आपके ज्ञान रूपी विद्या के द्वारा यदि आप कृपा न करें तो हमारा गुजारा एक मिनट नहीं हो पाता है सज्जनों। तो लक्ष्मी को जरूर घर में बुलाइए, मगर सिर्फ लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी के पति को भी, लक्ष्मीपति नारायण को भी। तब वो गरुड़ पर आएंगे, फिर आपका बहुत उन्नति होगा मित्रों। आज मैंने लक्ष्मी के बारे में दिल ए ने पहला भाग बतलाया, आने वाला अमृतवाणी में आप दूसरी भाग यानी दिल त्वी का श्रवण करेंगे मित्रों। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में रहो, कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। विश्वास करो परमात्मा में, और जिंदगी का दूसरा नाम समझौता है। हमेशा आप अपने जीवन में समझौता करते रहो मित्रों। बार बार हम ये कहते हैं भी कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे मित्रों, यहां तक था आज का अमृतवाणी उपदेश। मैं आपको जरूर फिर मिलूंगा अगर रहा

मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा। मित्रों, पिछले बार मैं आपको बतलाया था लक्ष्मी के बारे में, पहला भाग यानी देल ए। आज मैं आपको दूसरी भाग यानी देल त्वे बतलाने जा रहा हूँ लक्ष्मी के बारे में। ध्यान करना, क्योंकि लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं ना, आप भी, कौन नहीं, हम भी, सभी लोग दुनिया में बिना लक्ष्मी के जीवन ना ही चली। और काफी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं सिर्फ लक्ष्मी जी को, इसीलिए लक्ष्मी तो आएंगी, सब कुछ आपको देंगे भी, मगर जब वो अकेले आएगी तब तो उल्लू पर आएंगे और आपको फिर उल्लू बना के चले जाएंगे। मित्रों, धन दौलत आएंगे मगर उसी स्पीड से फिर खर्च भी हो जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मी पूजा करो तो पति पत्नी को दोनों लक्ष्मी नारायण के। मित्रों, तो मैं लक्ष्य बनाने की विधि बता रहा हूं आपको। प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्मी के पति का बनाओ, नारायण का बनाओ, लक्ष्मी पति का बनाओ, लक्ष्मी के पति का बनाओ। मित्रों, जहां लक्ष्मी का पति आएगा वहां लक्ष्मी भी अवश्य आएगी, या लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी पति का भी स्मरण करो, दोनों को साथ में, और पति के साथ लक्ष्मी का भी स्मरण करो। पति के साथ जब लक्ष्मी आएगी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, तब संसार के एक से एक संत आशीर्वाद देने के लिए आपके घर पहुंचेंगे, तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ये संत लोग, ये बाबा लोग स्वयं ढूंढते हैं अपनों को, आ जाते हैं आपके दरवाजे पर, और ये निश्चित है कि वे स्वयं आपके पता को ढूंढ लेते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण भी चाहिए। जब लक्ष्मी नारायण का वास होगा तो हमारे घर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य दूर से झांक सकते हैं, दूर से झांकेंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां भगवान नारायण बैठे हुए हैं। मित्रों, ये लक्ष्य बनाना बता रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, कि मानव का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का हम बना लें और उसके नाम का स्मरण करते रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, इस तरह आप स्मरण करते रहें। जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, मित्रों, जमीन उत्तम हो गई तो बीज तो बोना ही पड़ेगा ना। जब मन साफ हो जाए तो उसमें भगवान का बीज बोई दो। किसान से पूछो कि वो 6 महीने तक खेत को जोते, फिर उसमें खूब अच्छा खाद डाले और बीज नहीं डाले, तो क्या लेगा वो किसान? मित्रों, कुछ नहीं लेगा। क्यों भाई? वो तो उसमें 12 महीने से हल चला रहा है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? क्या बेकार गई है मेहनत? मित्रों, बेकार गई है मेहनत कहते हैं। इसी तरह से दान पुण्य और यज्ञ आदि का फल यदि लेना हो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, परमात्मा के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। शून्य शून्य, सब शून्य है।
शून्य है, नुल नुल नुल है, है? हम एक कागज पर पांच शून्य लगा दे, पांच नुल धर दे और छह शून्य लगा दे और दस्तखत करके बैंक मैनेजर के पास भेज दे, तो बैंक मैनेजर कहेगा कि अब महाराज की ये खोपड़िया दिमाग खराब होने लगा है, वृद्धावस्था आ गई ससुरा को है। पितरों इसी प्रकार तो उसी समय यदि हमारी खोपड़ी काम करे और तुरंत एक का अंक वो शून्य के आगे एन खींच दे, लगा दे, तो सीधे एक लाख हो गई है ना, एक लाख हो गई तो बैंक तुरंत नगद देगा। पर कब दिया? जब अंक लगा दे आप। इस तरह मित्रों, इस तरह जीवन के अंदर जब तक प्रभु का नाम रूपी अंक नहीं समाएगा, उसका नाम नहीं आएगा, तब तक प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। मित्रों, जहां तक आपके दान पुण्य योग यज्ञ का प्रश्न है, वे बेकार तो नहीं जाते ना, पर फलदायी भी नहीं रहते हैं। मित्रों, इसीलिए उस नाम की आवश्यकता है और उस नाम के लिए वेद भी, पुराण भी, इतिहास भी, संत भी, सत ग्रंथ भी नाम का प्रभाव गाते ही चले आ रहे हैं, गाते ही चले आ रहे हैं। मित्रों, गणेश जी महाराज ने नाम की महिमा को जाना, हृदय में धारण किया। आज भी उनकी सबसे पहले पूजा होती है, पूजा होती है उस पावन नाम का। हनुमान महाराज ने स्मरण किया तो राम जी उनके हृदय में विराजमान हो गए और उनकी मुट्ठी में रहने लग गए। शंकर ने जान लिया और प्रत्येक जीव के लिए काशी में मोक्ष देने लग गए। भाई बहनों, इस नाम की महिमा का वर्णन कहां तक किया जा सकता है। भगवान श्री राम भी उस नाम की महिमा गायन नहीं कर सकते। उन्होंने विचार किया कि तेरे अंदर ताकत है या नाम की ताकत है। रात को उठकर चल दिए, सूर्य तट के किनारे पर एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, पत्थर डूब गया। हनुमान महाराज देख रहे थे, पूछा, ओ महाराज जी क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हनुमान जी, कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि ये पत्थर तैरे, उनमें क्या हमारा बल भी कुछ था, यही देख रहे थे, पर हमारे हाथ का फेंका हुआ पत्थर तो डूब गया। मित्रों, तो कहने का भाव भगवान का ये था कि मेरे शरीर रूप धारण करने में ताकत नहीं, मेरे नाम में ताकत है, मेरे नाम में। मित्रों, मानवता आ गई तो फिर नाम की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि उस नाम के बिना उद्धार नहीं है, नाम के बिना गुजारा नहीं है। मित्रों, नाम के बिना सच्चा सहायक कोई नहीं हो सकता, सिर्फ परमात्मा। और नाम यहां भी है और वहां भी, दोनों जगह नाम महाराज रक्षा करता है। मित्रों, परंतु अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल तो मानव को भोगना ही पड़ता है, भोगना पड़ेगा। मित्रों, नाम का लेना बहुत जरूरी है और उसका स्मरण करना जरूरी है। जैसे आप प्यार में लीन हो तो दिन रात प्रेमी या यार के, प्रेमिका का नाम लेते रहते हो, पति पत्नी अपने में लेते रहते हैं नाम, इसी तरह भगवान का नाम लेते रहो मित्रों। और
बहुत से आजकल के पढ़े लिखे कहते हैं कि ये नाम में क्या रखा है, क्या ढोंग है ये, ऐसे लोग कहते रहते हैं। मित्रों कहते हैं वे कि नाम वाम कोई नहीं, कुछ नहीं, आज के दिन में तो पैसा है, लक्ष्मी होना चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ है, भगवान को भी मना लेंगे पैसा से। मित्रों कैसा भी कोई बलवान ताकतवर हो और शस्त्र उसके पास में नहीं, तो मुझे बताओ कि क्या शत्रुओं को जीत लेगा? वो जीत लेगा नहीं। तो नाम कहती है कि मैं भजन करने का हथियार हूं, अगर तू मुझे बिछुड़ा देगा तो तेरा हथियार क्या रहेगा। तो अगर तू जीभा को हथियार मानता है तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि संत तुलसीदास भी उस नाम की महिमा का वर्णन किया है। प्रेमियों आप विचार कीजिए कि एक विभाग के लिए भगवान ने दो दो जवान बनाए, चलने का काम एक है, उसके लिए दो पैर जवान बनाए, करने का काम है उसके लिए दो हाथ बनाए, करने का विभाग एक है और अंग रक्षक दो, देखने का विभाग एक पर आंख दो दिए, सुनने का काम एक, कान दो बना दिए। मित्रों सूंघने का काम एक पर नथुने दो बना दिए, हर विभाग के दो दो, फेफड़े दो बना दिए और जीभा, जीभा से यही कहा कि तू परमात्मा का नाम ले, मधुर वचन बोल, पर जीभा कितनी बदमाश, विचार कीजिए, इसे बदमाश बोल रहा हूं, बदमाश बोल रहा हूं, संसार को नष्ट कर देती है, घर को नष्ट कर देती है। द्रौपदी ने यही तो कहा था कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं, 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई इस जीभ से, इस जीभ के कारण। मित्रों तो भगवान ने विचार किया कि जीभा तो संसार को नष्ट कर देगी, क्या करें क्या करें, तो इसके नीचे रस्सा बांध दिया, जिसको तालवा कहते हैं, कि अब तो चुप रहेगी, चुप रहेगी, पर रस्से से बंधी हुई भी चुप नहीं रहती। तो 32 पहरेदार बना दिए, सख्त कठोर दांत, ताकि इसको बाहर न आने दो और ज्यादा बकवास करे तो काट दे, फिर भी नहीं मानती ये जीभा, नहीं मानती है। फिर मजबूत गेट बना दिए, फाटक। आप अस्पतालों में देखते हैं जहां जगह जगह लिखा होता है, बोल मत चुप हो जा, बोल मत चुप हो जा, पर ये जीभा फिर भी नहीं मानती, इसलिए यदि जीभा पर भरोसा किया जाएगा तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों बच्चों, ये डुबा देगी तेरे को। यही जीभा स्वाद को बेस्वाद कह देती है, क्या भरोसा है इसका, मीठा बढ़िया लाए, अरे ये तो बेस्वाद हो गया, भूख रही तहां तक तो स्वाद रहा। मित्रों भूख मिट गई, अब मजा नहीं आ रहा है। मित्रों क्या विश्वास, इसलिए नाम कहती है कि ए जीभा
जिस पर तू भरोसा कर रहा है ये काम नहीं करेगी। और हे मूर्ख मन, मैं उस प्रभु नाम सिमरन के लिए हथियार हूं। अगर कोई ये कह दे कि ये गलत है तो सचमुच वो मूर्ख होगा। मित्रों, इसीलिए अपनी जीभा पर आप अपने परमात्मा के नाम हमेशा लेते रहना, परमात्मा पर भरोसा करते रहो, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है ना। तो इस पर आप अटल विश्वास करें। प्यारे प्यारे भाई बहनों, नाम जपो, यही हथियार है। तो अगर कोई कहे कि नाम में क्या रखा है, अरे नाम ही तो सबसे उत्तम है, भगवान को तुमने देखा नहीं, तो प्रभु के नाम में ही में भगवान को ढूंढो। कितने संत महर्षि लोग, कितने भक्त लोग नाम लेकर मोक्ष पा गए, भगवान को प्राप्त कर लिए, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? मगर विश्वास तो है ही नहीं आप में ना, यही तो प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मित्रों, भगवान के इच्छाओं को पूर्ण करने से हमारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। आज मैंने लक्ष्मी के दूसरी भाग बतलाया आपको, लक्ष्मी के अलावा कुछ कुछ और मैंने आपको बतला दी, तो इसे जरूर आप अपने जीवन में उतारिए। लक्ष्मी जी की अकेले पूजा मत कीजिए, दोनों पति पत्नी को, लक्ष्मी और नारायण के, तभी आपका कल्याण है। मित्रों, अन्यथा धन दौलत आएगा, सुखी नहीं हो पाएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में। दोनों को बुलाओ, बहुत सुखी हो जाओगे। प्रभु, आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। मिलेंगे फिर, अगर रहा जिंदगी।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

के सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय। और आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं जो बीमार है भगवान से यही कामना रखते हैं कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे। यही प्रार्थना है मेरा। जिनका घर एक नया शिशु ने जन्म लिए है तो उनको बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें भी बहुत सा बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत किया जाता है। और जहां अब तैयारी हो रहा है नौकरी की ओर जाने के लिए तो कहने के बाद ये हो जाता है कि आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और ये मत भूलना, गांधी जी ने क्या सुनाए थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ।

तैयारी कर रहे हैं स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो ये कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। और ये आप अवश्य जानते हैं कि ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है। ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है, सबसे बड़ा संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, और सबसे अच्छा सुरक्षा विश्वास, और सबसे बढ़िया दवा हंसी। हंसते भी रहना, क्योंकि कहा गया है सबसे बड़ा दुआ उसी को। सबसे अच्छा सुरक्षा, जिसे हम विश्वास से जानते हैं, और ये विश्वास खोना नहीं, क्योंकि कहते हैं नीदरलैंड्स में ना कि फर्त्रोवन राखी मार एन केर क्वाइट,

और कहा जाता है कि सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि को, क्योंकि सबसे अच्छा हथियार भी कहलाया जाता है और यह हथियार धैर्य है। तो धैर्य से काम करना, जो हमारे देश में आए हैं सफर कर लिए, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

रेडियो दनहाक में अगर आप आए हो तो जरूर देख के जाना बेनहॉफ फ्रेडस पैलेस। जिसे कहा जाता है सिंबल फॉर दनहाक द स्टाद फन फ्रेडे एंड रेख्त। इसी प्रकार से दनहाक में कितने बसिंस वार्दखेद है।

कहते हैं कि 2025 में फ्रीडस पैलेस मदुरुदम वंदल तख्त दौर द सेंट्रम जो स्केवनिंगा कापीर द स्काइफ्यू जो स्केवनिंगा पे है कैक डाउन और जो नेशनल मोन्यूमेंटन और आये होटल हाक्से तोरन लंगे फोरहाउट हेट प्लेन ये सब जो 2025 में कहलाया गया है द मेज बसोख्त Sinswaardigheden in de

सुंदर सा गीत सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो अपने नानी के अंतर्गत ये सुनाए। क्यों ना हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये सुंदर सा गीत जो बच्चे ने और जाकर के बच्चे के अंतर्गत रखा गया, सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। दोस्तों सुनने वालों, ये बात मत भूलना, हम रहते हैं हॉलैंड एक सुंदर देश में, पर अपना संस्कृति सभ्यता और भाषा को भूलना नहीं चाहिए। देखा जाए कि 150 साल से ज़्यादा हम सब भारत को छोड़कर के सूरीनाम गए और सूरीनाम से फिर हॉलैंड और भी कितने देशों में जा करके हम सब बसे हुए हैं, पर अभी तक हमारा सभ्यता संस्कृति और भाषा में बदलाव नहीं आए हैं। तो क्यों ना एक और सुंदर सा गीत के ओर बढ़ते हैं।

0: आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। दोस्तों ये गाना हम चुन चुन के रखे हुए है ताकि आप इस पे ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या हम अपने बच्चों को हॉलैंड में रह कर के भी अपना भाषा को सिखा सकेंगे। कहा जाए कि यूट्यूब पे जब हम थोड़ा खोज करें तो बच्चों के लिए सुंदर सुंदर संदेश के रूप में और रखा हुआ है। बबली जी आज आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं और कुछ मैंने बच्चों के अंतर्गत में गाना चुन चुन के रखे हुए हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
1: सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। बच्चों के गाने तो बहुत सारे हैं और जब हम बचपन में स्कूल जाना शुरू करते बच्चे प्ले स्कूल हिंदी में कहते प्ले स्कूल शिशु निकेतन स्कूल, तो वहाँ पर सबसे पहले एक गाना और सिखाया जाता है।
0: तो गाना का बोल क्या है?
1: मछली जल की रानी है।
0: सबसे पहले ये गीत सिखाया जाता है बच्चों के?
1: हाँ जी।
0: तो हम क्यों ना वही गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: ये गीत सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है ना?
1: एक गीत और है चंदा मामा दूर के,
0: तो हम क्यों ना ये गीत जो सुरीनामों में भी सुबह में रेडियो पे भी चलाया जाता था, क्यों ना हम लोग यहाँ भी चलाते हैं और चंदा मामा दूर की।

0: सभी बच्चे के लिए ये सुंदर सा गीत बबली जी, ये गीत पे सुन करके आपको कुछ और संदेश रखना है?
1: हाँ जी, थोड़ा सा संदेश है। इन गीतों में हमें ये संदेश मिलता है कि जो अपने घर से दूर हैं, विदेशों में रहते हैं या अपने माँ बाप से दूर हैं, तो लिखने वाले ने धरती को माँ कह दिया और चंदा को मामा कह दिया, और जो बहनें दूर हैं वो चंदा को अपना भाई मानती हैं।
0: तो चंदा को अपना भाई मानती है। देखा जाए कि इस पे जब हमारे जब शादी होता है ना,
1: हाँ जी,
0: तो शादी होता है तो भाई जो अपना बहन जब माढ़ों में ब्याह होता है तो अपना बहन के, और जब जा करके पंडित हाथ पे हाथ धरवा करके और उस पे जल छोड़वाते हैं ना भाई से,
1: हाँ जी,
0: तो भाई वहाँ कहते हैं अपने बहन से कि जा, तेरा शादी आज हो रहा है, मैं इस बात पे ध्यान रखूँगा कि अगर आपके आगे में जाकर के बच्चे होंगे तो हम आपके बच्चों पे ध्यान देंगे, और बच्चा भी हो जाता है पर समय रुकता नहीं ना,
1: हाँ जी,
0: तो समय रुकता नहीं और बच्चे का भी एक दिन शादी होता है, तो वही भाई जो जा करके इमली घोटाता है, और इमली घोटाता है जब, तो यहाँ पर ये संदेश रखते हैं भाई कि मैंने आपसे ये वादा रखा था कि कहीं जा करके आपके बच्चे होंगे तो उनको हम ध्यान रखेंगे, और आज मैं इमली घोटा करके और यहाँ से अपना जो कर्तव्य रखे यहाँ से पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए क्यों ना अभी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ और कहने वाले हैं।
1: हाँ जी, जरूर, क्योंकि ना हर बात में मतलब छिपा है, उसका अर्थ है, तो इन बातों में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है जो हमें समझना चाहिए।
0: हाँ, कितना जो हम लोग अपना साहित्य परंपरा से आते हुए देखे हैं कि माढ़ो क्या है, मटकोरवा क्या है, मंडप क्या है, हम लोग ने अभी मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ये भी रखा था कि 150 साल से ज़्यादा हम लोग ने भारत को छोड़कर के सूरीनाम गए, सूरीनाम से हॉलैंड और भी देशों में गए हैं, पर अपना सभ्यता संस्कृति और भाषा को नहीं भूले हैं।
1: सही बात, और हर बात में एक गहराई छुपी है,
0: हर बात में एक गहराई छुपी है,
1: उस रीति रिवाज का मतलब क्या है, अर्थ क्या है,
0: सही,
1: जो हम लोगों को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सुनने वालों, हम लोग इस पे भी ध्यान दे, क्योंकि देखा जाए कि जो हमारे पुरखों है, जैसे कि एक शुरुआत में मैंने भी ये गीत को चलाए जिसमें ये मंत्र का संदेश रखा गया कि नानी तेरी मोर को मोरनी ले गए।
1: हाँ जी,
0: तो ये गीत का जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अभी तक नया फैशन उसे ना लिख पाए कोई,
1: नहीं नहीं।
0: अब देखा जाए ये चंदा मामा वाला भी अलग अलग लोग अपने आवाज में गाए हैं, म्यूजिक को बदल दिए, पर वो टेक्स्ट को नहीं बदल पाए।
1: नहीं नहीं नहीं। और देखो ना, जो शब्द बने हैं माँ और मामा कहते हैं तो दो माँ लग जाते हैं, क्यों माँ से भी बढ़कर मामा,
0: तो मामा लोग के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि अपना उस पे ध्यान दे कि भाई हमने अपना बहन के शादी में जब जा करके उनका कन्यादान हो रहा था तो जल को और छोड़े थे, और कुछ कर्तव्य आपने किए, पर शायद इस बात को नहीं जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हम एक और
1: वैसे ही मासी, मासी में भी माँ लगता है तो वो भी माँ जैसी मासी,
0: मासी में भी माँ लगता है माँ जैसे, क्यों ना एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं बबली जी।
1: जरूर।

0: मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो सुन वालों, ये सुंदर सा गीत हम सुन के हमें भी कुछ ख्याल आता है कि देखा जाए हम इसी में लगे हुए शायद होते हैं, पर समय हमें छोड़ता नहीं है और एक दिन वो समय आता है जहां हम फर्स्ट चॉइस में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी सब जो अपने जीवन में लगे रहे हम उसे छोड़ देते हैं और वहां बस यही होता है कि आज हमें जीना है। एक दिन और ऐसी प्रकार से पार होता है और हर एक दिन एक एक दिन के तरह आगे बढ़ते हैं, ना बबली जी।
1: तो संजय जी, आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं है।
0: जैसे कि बचपन में हम सब क्लास में बैठते हैं ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो क्लास में सभी बच्चे और एक साथ में मिल करके गाते हैं,
1: जरूर।
0: और इसी तरह से हमारे अवस्था जब आ जाता है तो हम भी वहाँ पर बैठ करके और सभी मिलजुल करके कोई भेदभाव नहीं रखते हुए और साथ में रहते हैं।
1: लेकिन जहाँ हम जाते हैं सब जगह इकट्ठे काम करते हैं, चाहे काम करने जाएं, चाहे स्कूल में पढ़ने जाएं, सब लोग इकट्ठे मिलते हैं वहाँ पर।

0: फिल्म जिसमें ललिता पवार ने काम किया ना,
1: हाँ जी,
0: और ये सुंदर सा संदेश जो बच्चे अपने दादी को मना रहे हैं,
1: और जो बच्चे बने हैं उसमें एक डेजी ईरानी है,
0: डेजी ईरानी
1: और वो फराह खान जो डांस डायरेक्टर है उनकी मौसी है,
0: उनकी मौसी। तो ये गीत को आगे बढ़ाते हैं।

देखा जाए तो एक बॉलीवुड है जहाँ पर हर चीज़ के ऊपर गाने बने हैं, चाहे दादी हो, नानी हो, चंदा हो, मछली हो, जानवर कह लो, पक्षी कह लो, हर चीज़ के ऊपर गाने बनते हैं।

दरबार में मैया खुशी तो जरूर मिलते हैं। और दोस्तों नवरात्रि का ये स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और यानी हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नवरात्रि सॉन्ग की ओर। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

अरमा, और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और अगला भजन के ओर हम जाते हैं। वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि जो है।

दुर्गा माता के और भवन जो है वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाए गए हैं। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रि यहाँ से कहते हैं। अगला भजन की ओर हम चला जाए।

अम्बे माँ नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए अम्बे।

मेरे अम्बे, और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर।

आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी फ्रॉम द मूवी धमाल, तो से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखे तो ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

आप सुन रहे थे गुरिया चुराना मेरा जिया। धमाल फोर से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी, चलो ये भी हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फ्रॉम द मूवी धमाल फोर से हमने पेश किए हैं। श्री तू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाली।

from the movie स्त्री, तो उसे हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

फ्रॉम द मूवी जेनी विथ्स सनी, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं सावन में लग गई आग दिल में रहा है। श्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्रीतों से हमने पेश किए हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

From the movie Dhamal 4 से हमने पेश की है बैसलाव, पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

अभी आप सुन रहे थे रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो तुम ही हो बंधु। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे घाघरो रुत्वी पांडे की आवाज में इश्क से आगे ये न्यू सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

आशपी की आवाज में भी आप सुन रहे थे किसका है ये तुमको इंतजार मैं होना। काश भी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।

काश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।

मेरा गाना है सुनने वालों, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। वाह ई आए नीले गगन के तले, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नीले गगन के तले। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गीत जो है वो सच्चाई की तरफ आपको ले जाएगी। और हम खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सुरेन भगवान दीन जी को, जिन्होंने ये गीत मुझे भेजा और मैंने ये गीत को ढूंढ लिया और ढूंढते ढूंढते आज आपके सामने मैं ये सॉन्ग ला रही हूँ।

अभी आप सुन रहे थे 50 साल पहले क्या हकीकत है सुनने वालों। थैंक यू ईआई। इचक दाना बीचक दाना।

अभी आप सुन रहे थे निशा भी और विंधा सिंह जी की आवाज़ में ईटक दाना बीचक दाना दाने ऊपर डाना। उषा उत्तप आ रहे हैं प्रोग्राम में, चलिए ये हो जाए आप सभी के नाम।

वाह क्या बात है। उषा उत्तप जी आपको सुना रहे थे लंबादा। बेन पराख और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। आ भी जा माहिया।

अभी यहाँ पर सुन रहे थे सविता सिंह और बेन पराख की आवाज में रात भर मेरी पायल छनकती है। सुनने वालों, जब गर्मी होते हैं ना तो पंखा की जरूरत तो बहुत होती है। तो निशा जी यानी निशा बी जी आपको क्या सुनाने वाले हैं बताओ? क्या नहीं बताने वाली, खुद सुन लीजिएगा।

निशा बी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, पंखा तो लाई दियो ना सजन जी, पंखा तो लाई दियो ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगा ज़रूर। पृथ्वी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, श्याम सुंदर गगरी।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर घघरी उठावे हमारे घरे मूंगे के माला फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आप सुनेंगे और आपको सुनाने वाले हैं उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी. चलिए मिलकर सुनते हैं.

है देव कि आजा तुझे प्यार करे फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आपको सुनाने वाले थे उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। मैंने दिल तुम्हें दे दिया अलका यग्निक के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।

ओह सनम, फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किया है अलका याग्निक और सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं इसी फिल्म से, आप सुनेंगे, तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम।

बेकरारी ए मेरे सनम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लैक मेल से हमने पेश किए हैं। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था राजा, एक थी लड़की दीवानी।

सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अभी आप सुन रहे थे। पहली बार मोहब्बत की है, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुमसे आप सुनेंगे। चलिए ये सॉन्ग हो जाए।

फ्रॉम द मूवी फिजा से हम यानी फिदा से हमने पेश किए हैं दिल मेरे ना और इंतजार कर उदित नारायण के साथ में अलका याग्निक जी आपको सुनाने वाले थे। क्या दिल ने कहा दत्ताई दल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते उदित नारायण और अलका याग्निक।

क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको मिलकर सुनाने यानी सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। सोनू निगम के साथ में श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी क्रिस से आप सुनेंगे।

सुनाए प्यार की एक कहानी अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी क्रिस से हमने पेश की है सोनू निगम और श्रेया घोषाल आपको सुनाने वाले थे। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है फ्रॉम द मूवी अंदाज से हम पेश करते हैं उदित नारायण और अलका यज्ञित साथ मिलकर सुनाने वाले हैं।

आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। फ्रॉम द मूवी अंदाज से हमने पेश किए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक आपको मिलकर सुनाने वाले थे खूबसूरत। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तुम्हाने या माने यानी तुम्हाने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जी आपको सुनाने वाले हैं।

खूबसूरत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किया है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में। कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो क्या है बताओ, क्या नहीं बताने वाले। चलिए मिलकर सुनते हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है।

दिल में है जो भी है वो अपना सा है। अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है। अनुराधा पौडवाल के साथ में कुमार शानू जी आपको सुनाने वाले थे। अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना।

यही प्यार है, है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश की है अलका याग्निक और बाबू। सुप्रियो की आवाज में मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। अलबेला इसी फिल्म से हम पेश करते हैं अलका याग्निक और बाबू। सुप्रियो मिलकर सुनाने वाले हैं सर से सरक गई क्या तेरी चुनरी।

अभी आप सुन रहे थे सर से सरक गई तेरी चुनरी, फ्रॉम द मूवी अलबेला से हमने पेश किया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो जी की आवाज में आप सुन रहे थे। तुमसा नहीं देखा, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुझे तुमसे क्या है, आप खुद सुन लीजिएगा।

तुमसा नहीं देखा इसी फिल्म से हमने पेश की है मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी रन इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार ओ मेरे यारा

अभी आप सुन रहे थे तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक और कुमार सानू आप सभी को सुनाने वाले थे।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी हमारी हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी। राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज। सभी रोजादारों को हम माह रमजान मुबारक बारी पेश कर रहे हैं। Have a blessed day until next time.

तो तुरंत हम चलते हैं, कहां चलते हैं, एक रीमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं हमारे दोस्तों। और ये रीमेक सॉन्ग क्या है और तुम तो जानते हैं, स्वीट मेलोडी का सॉन्ग है मोहन के मुरलिया। तो मोहन के मुरलिया तो बजते हैं भैया, और जब बजते हैं तो आपको हम कहते हैं गुनगुनाते रहो, और गुनगुनाने के बाद झूमते रहो, यानी कि इस सॉन्ग

और अलामंग सुकु सुकु और कोंची सुकु सुकु भैया प्यार के सुकु सुकु के बांचित हो रहा है हमारे सुनने वालों। एक बार फिर करते हैं, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आपके प्रोग्राम बनाना है आपके लिए हमारा काम, यही है हमारा प्यार का पैगाम। तो उसके बाद हम चलते हैं कि मेहनी लगा के रखना।

लगी है तेरी हाँ तेरू मेहनी कब लगते है जब शादी होता है ते। तो धर्मेंद्र सिंह ने आपको इस गीत को गाकर सुनाए हैं दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं। और आजकल भी बहुत यूपी पोपी है, और वो कौन सा गाना है, शेकिंग बेबी शेकिंग।

0: कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो हम तुरंत तुरंत लेकर चलते हैं, और कहां लेकर चलते हैं दोस्तों, सूरीनाम देश ले चलेंगे, और देश आप लोग को हम जरूर घुमाएंगे फिराएंगे और बताएंगे कि दुनिया पे क्या क्या हो रहा है, ये बताना तो हमारा काम है, हमारे यारो हमारे मौजी। और आप सबको हम कहते हैं हमारा रेडियो है फाहुन, जो नेहरा शहर से हम लाइव प्रस्तुत करते हैं। हाँ, आप लोग सुन सकते हैं रेडियो फाहुन एफएम प्रिंट एनएल पर, लाइव पूरा दुनिया पे देख सकते हैं। तो हमारे मौसी नानी हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं, अपना मातृभूमि अपना सूरीनाम की ओर। घाम झूरा बहुत ज्यादा है भैया सूरीनाम देश में, और अदमीलों ने का करे भैया, घास में लगा दे है आग, घास में लगा दे है आग, और जो घास में आग लगा दियो भैया, और झूरा है सब झुरान है, तो ना जाहे देखे भैया कि अगिया जा है, अगिया कोई लकड़ी जड़ावे की पाल जड़ावे, जौनची ओकर रास्ता में रही सब भस्म कर दे मौसी, ऐसे चीजवा है ना। तो ऐसे भैया आग लगल रहा, और वही में भैया एगो घर रहा घास के साथ, और वहां घर भी जर के भस्म हुई है, और ये बात हो रहा है सूरीनाम के सरमक्का के मेरे ख्याल से दोस्तों। और ये मां एक आदमी के सब पकड़ी से, एक आदमी के पकड़ी से, और बोले अरे मिया बोले हैगा मन वेखर ब्रांडन खरास एंड फेल्ट ब्लूसन एखर वोनिंग ब्रांड ऑफ एंड हेज बीरन राख स्वार बस खाद, बोले मन वेखर ब्रांडन खरास एंड फेल्ट ब्लूसन, और बोले हैगा एखन वोने ब्रांड ऑफ, और बोले अपन एक घर उकर जरे है, और उ घसिया में न जाहे का बोले अगिया बुतावे, और बोले कोपनाम वेख है एगो भैया 7 अक्टूबर के बाद थे मौसी, एगो लकड़ी के घर है फोलीडक जर के भस्म हुई गया, ओकर बगले में एगो पत्थर के घर है ईंटा के घर है, जहां पे एगो द्रियन देर तक यार का एम का ये है दी एंड होते वो नहीं ब्ले सो हेवन का वेखत है फिर तो दूफन ओक ना द अकेंटन हम दार तू अब दरा खादन खीफन दत मेल द पुलिस सी। और बताए गए हैगा नीखरन तो बोले दसा कोम आने तो रोलन की जब नीखरन तो तक यार के एरका ओइनसेन ब्रूर देका हिन बीरमान आंस प्राकन ओम हेन ब्रांडन फॉर खरास एंड फेल, और बोले हैगा एगो नीखरन तुम्हें तक यार के आदमी और ओकर भाई बीरमान के बोले है कि घास में आगी ना लगाओ फॉर ब्रांडन फॉर खरास एंड फेल, तो ई एर का भैया फर और साग द रोक एर्नस्ट तक ओवर लास बोले है उतरे में वोर द विसलिंग भले भैया एंड मोंद एट अन हंद खमीन हाथ से भी झगड़ा भइल है, और बोले वेखर करी से जोन अगिया बरे ओके बुतावे के ओक तुन द अखेंत सिपाही हुआ पहुंची से, बोले ओके बोले तू अगिया बुताओ अपन, बोले है फर लीड द प्लेक तरवेल तीखन पड़ते फॉर द फर्दर अफांडिंग में द पुलिस सीखिंग स्लुक हेड फिर ओवर नट होतिंग उनी वारें कि उकर एक जर के आगी से उकर घर भसम हुई गे, और वही घर फैल जलावत रहा, बीरो ओके बोले हैगा अगिया ना लगाओ अगिया बुताओ, बीरो से झगड़ा करी से और ना बुताई से सिपाही अब भी वोर दे विस्लिंग हुए हैं, और वही के घर जर के भसम हुई गे, और बीरमान की ईंटा के घर भी भैया उनी फोलीडक इम्ब्रांस तो हेड फिर फॉर स्प्रेड सिक्स नल एंड लेफ्ट देयर पन खहील इन द आस। ये बात है हमारे सूरीनाम की जनता।
1: अब देखो भैया, तू ही परानी में केकर घरे बोले खुटपुट ना हुए, झगड़ा लड़ाई तो हुए है लेकिन ये बातचीत हो रहा है निकेरी के भैया ऋषि ओम फ्रो भाई। हाँ बोले औरत के कारण झगड़ा भइल निकेरी में, जहाँ पे भैया दगव्वल भइल है, दगव्वल भइल है और ना खाली दगव्वल भइल है, दुई आदमी मर गए भी ओ मा मौसी, निकेरी में दुई आदमी मर गए। ऋषि ओम फ्रो मोकल आ ले रे फोर्स की तरह पढ़ते हैं मैं तुई दौड़न, औरत के कारण लड़ाई भइल है और ये बातचीत हुए को परके प्लास सेगा तेल सूर के उस कनाल वेक न्यू निकेरी में मौसी। और बताए गए हैं 8 अक्टूबर के एगो सेशन फिर तक यार के भैया के नाम अनिल बुधराम और एगो हिंदुस्तानी द्रिय फिर तक यार के रितेश मथुरा है। और बोले है इंसिडेंट फोन थ्रोम 4:30 बजे बोले है प्लास नार्द पुलिस ब्यूरो। और बोले फरक्लार करे डिफेयर से फरक्लारिंग बोले है कि मथुरा जोरा भैया दी वेरक सामीज बे उलांटी में काम करे है और भाई का दे एन फी नेशनल फेल खैत के बोले दागी से मृत्र स्कूटन में से दिस वापन ओम बुधराम के ऊपर दागी से और बोले दाना से सेल्फ है बनने पहले बुधराम के दाग के मां ढाड़ी से बस अपने आप के भी डी एन फियर दाग के मर गई मथुरा भैया अपरो मर गए और भैया बुधराम के भी मार दाई से बोले है रेला शोनील स्पानिंग रहा लेकिन मुखल का अख्तरों खरों फान दे इंसिडेंट अब तू मर गए ले भैया बुधराम के भी मार ढल ले बाटे अब तो औरतिया और फराई हुई गए भाई अब कौन बुधराम तब बारे में तब आएगा तो एक बारे में बोले हैगा पुलिसिया अखेन बुधराम के को अरेस्ट कस को तो नहीं पाए से ओकर उज्जर देती उता पे और बोले हैगा ओकर बस्तीर जो कुर्सी है बोले ऊपर ओकर लाइक पाए से मथुरा लाखते सुनते देते इसे ऑटो एंड फंड विद द ट्यूटर मार्क एक्स ऑफ द क्रोन में द स्कॉट वार्निंग ऑन सेन हु बेड मानन लीव द नॉक मार वारन नीड अनस्प्रीकबार डायरेक्ट ना मर अल्लाह मां बोले है लातर सब के लिए एंबुलेंस मुंगरा में जिसे सेंटर में और बोले पहले मथुरा मरल है तो कर बाद में बुधराम भी मर गए भैया। बोले एगो खतरौद औरत के बारे में जा है खतरौद फ्रो दी बेहद इंसिडेंट अनवीशक वास फरक्लार द से उनखफे सांद बड़ी सेफन यारन खलीदन एगो खहीमर लाची रहा मथुरा के संगे बोले मथुरा के संगे बोले हमें एगो खहीमर लाची रहा 7 बरिस पहले के बात है और बोले ऊरे लसिया बोले शेर का 1 बरिस में दोन हो गए भैया। और बोले हैगा परमारी बो में हम लोग चल गले बोले उनको फिर 1 बरिस बाद बोले सौ से अरे लाची में बुधराम से इन बखोन तब मथुरा के रलसिया छोड़ के भैया गल बुधराम के पकड़ ली से तो बोले व्हाट्सअप कौन ताक रहा मैं मथुरा बिलीव बस्तान बोले उन नाम सोचा है मथुरा के छोड़ दे रहा 7 बरिस के रलासी 1 बरिस में मैं बोले तब वो व्हाट्सअप करत रहा मथुरा से और बोले फॉल्क द फ्रो मथुरा उनको फिर मान खलीदन बोले उन निकेरी गए लहा एंड फ्रू कह हर हाल तक ओमन अंतमुदिंग और बोले हैगा वो बेर बेर मांगत रहा मथुरा से जाए अंतमुद करे और बोले वो वेखर करत रहा सही वेखर द फर वेखन कि ओके रलासी रा बुधराम से तो बोले वारफा मथुरा फॉल्क सा नीट ऑफ द हुक द वास बोले वो संजा के 3:30 बजे भैया ओकर बिटिया पुलिस ब्यूरो में थ्योरी एग्जाम गैला करे रहे विवेश के पार्केर कर ले रहा अपन ओतो तेले सिर लगे हुआ पे बुधराम उफ गैल है बसुक करे पुलिस और गैला इन्फॉर्मेर करे बिटी वा सलाग भैल की ना हाँ सेनार एक सेकंड नीट में तेना हम अफकस ब्रोकन बुधराम को आमदार हार ओतो एन सो हार मेट फॉर ही फर्स्ट टाइम हेवन खफरा वारम से हम नीट वेल अंतमुतन तो बोले कहे ना तू हमसे मांगे भेंट करे तो बोले हम फॉर प्रॉब्लम ना मांगते हम प्रॉब्लम तो फोर को ने रेस है ना सुपर मारे फोल्कस हार फोल्क द बुधराम हार एंड स्टॉप द है दार इवनीस बोले कोर्ट द ना फर्स्ट के ओ मथुरा बेरे सो पर सुपर मारे मथुरा फिन गले सुपर मारे में टरवेल द फ्रो बेरे कासा स्टोन होर द से दैट बुधराम इज ऑप्शन मोबाइल टेलीफोन और मथुरा तो उंड द फ्रो रे तेरे किनारे पर के प्लेटफार्म तेलसी वार बुधराम ना सर आउट पर के द मथुरा कोमला तरफ ने देखते इनते ही भरा फुटकड़िया में भैया बात एमा ये बहुत लंबा चौड़ा है कि दोनों अपरे में दक के मर गए हैं इक्वा इक्वा दागी से को नीख मिलीमीटर अन स्वार्थ पिस्तौल से क्लॉक से अन पत्रोन हौदर में नीखन पत्रोन से चार गो दागी से फिर हुलसन अन होस्टर एंड टू मोबाइल टेलीफोन इन बसला genomen ook de camera beelden van het beveiligingssysteem van Telesur werden veiliggesteld. Daarnaast nam de politie 3 voertuigen in beslag. Toen bhaiya aurat ke piche dekho kya hoige 2 aadmi ke jaan chal gaye hai Mathura mar gaye nani Mathura mar gaye hai aur Mathura ke saath saath Mathura ke saath saath Anil Badram bhi mar gaye dosto that is the Karan van der Sake aur further kaam hai करना भाई अब देखो भैया SLM रीजनल फ्लुक्टन SLM भैया घंटन फीनो फीनो फरत्राग भैले काबिन पे सुनील के कारण भैया हम लोग तो गुंती बाटी सुने के और नीसुआ बतावे के कि SLM जो नहीं कौन रकम फरत्राग हुए है मार मौसी लोन नानी लोन SLM पे जा है तेरी से खुद को उप है मार देखो कौन चकलस करे SLM यहां बातचीत हुए Suriname Airways ke John Fertraag phin hoi gehega omdat cabine personeel stacking kari se bhaiya bole da jab cabine personeel na stack kare ta machine tutral hai ya machine na tutral hai ko kai na ghuseral hai ja o na ghuseral hai ta dakana na ure na ur bhaiya ek se ek cheez ma e ja hai bhaiya omdat the personeel cabine personeel was unstuck in that blijkt uit een angstpas vlucht schema door de luchtvaartmaatschappij is verspreid over de PY 431 ke baantje toe he jo na Nederland aur bhaiya Aruba Curaçao jaat later jai ke udal hai het toestel vertrek 7 uur vanuit Paramaribo naar Aruba waar het om kwart voor 7:18 uur aankomst to yahan bataye gaye dosto volgens vertrekt het om kwart voor 8 Raad ke Curaçao aur Oeral hai met een geplande aankomst van 20:15 uur. Deze terugvlucht naar Paramaribo staat gepland voor 21 uur. Aankomst, ik wil je raad ke bijna doorstoot. Die vertrekking was toen SLM ke hem doen gewinnen. Hoe je liet dat niet? Aur een maand hè, we weten ki kale bhi vertraag hoe het heel vluchten vertraag hoe het. Hem doen Janila. Maar de SLM me baithe ta na mien dhire kaanpe lage op tijd uri ki na uri chahe ske pol pe o chahe sandrei pe dat is gewoon de vaste dat zijn de vaste dingen just automobilis aangehouden met vals rijbewijs bij verkeerscontrole te reisdeek me bhaiya aur bhaiya oké sipahi pakal li se verkeerscontrole bhaiya resort reisdeek me aur bole hij overhandigde bij de controle aan rijbewijs dat vals bleek te zijn rijbewijs was vals लेरा भैया हां बोले फ्रॉड ओके पकड़ लीजिए सुरिनाम में भैया ये चीज भइल है तो हम बोली बता दी अब देखो भैया सरनाम के ना नीललान के दुकान दुआने जो है वो तो गुंती है पिंडा काशी में को कहीं ना पावे के नानी मछरी में पैचल में सांबल में केचप में का बोले सिर खुद में मसाला में चाउर में ओ तो के अंदर दिल में द्राखलेन पोकलेन के मत भरे का बोली मौसी बकी पहला दाई हम सुनेला भैया पहला दाई सुनेला को के इन पैसे नीदरलैंड के और दुआन तताई में सरनाम से भैया बोली जोनी तताया में कैसे रहा तो यहां बतावे सबन ऑन डेक करी से बस कैरमिंग टावर में द फरदोफन द मिडलन वारन इन हेड मटेरियल फ्रॉम द टावर ग इंप्रेगमेंटेड भैया कोकाइनवा तताया में धलकी हुई में जमा दे रहा है टोटल भाषा में बोले जाए इंप्रेगमेंटेड कर ले रहा और भैया द फोन्स वेर खनान टाइजेंस फिजिकल कंट्रोल तो लो जाने सुरिनाम के कोकेन दुआन 100% कंट्रोल है तो इस पुरबेरी करे दादाई में हबड़ा करे के बेद ओंडसुकन फन तोवन अन अन चाइने दुआन इज ऑफ द फरदो फन द मिडलन उसे ऑन देख करे से बोले हेगा हर किंग दिस नीड ओम लॉस अ पाकिए दी टसन द तोवन वान फॉरस्टॉप हर मटेरियल सेल्फ वाज अन ड्रग्स डोर ड्रंक Oma giet kerala een soort mensen implementeer kerala jamawalla de douane ik erbare mee bole deelde de ontdekking op Facebook met de woordspelling van gelukkig konden onze douanes hier wel een touw vast kropen bij het bericht plaatsen deze foto waren we verzamelen voornamelijk ujjar ujjar tatai bhaiya gaanthi devalla ik implementeer kerala konchi nani konchi ko ka कोकाइन ओमा इम्प्रेगमेंटेर करेला हमारी प्यारी प्यारी जनता हॉलैंड के और हमारे सूरीनाम के जनता अब जहां भी हो हमारा प्यार आपके साथ है और भूल न जाना 11 तारीख से नवरात्रि चलेगा पूरा दुनिया में अभी से बोल ले आप सबको एक शुभ नवरात्र हुए रेडियो फाहुन के पूरा पूरा टीम से तो हमारे मौसी एम जायला सरनाम वेल साम में गयाना रेखियो फुदन तेजन से कारी कॉम्फोर्ट से बोले कारी कॉम के तू जाने हूँ आप काबुल लगे है कराइबिस की जैसे ही यूरोपा के है एयू है उसे सुरीनाम में है कारी को तक गायाना और सरनाम मांगे सबके खाई से फूदक करे भाई सुरीनाम वेल हेड कोमन द कारी कॉम फोर सीटर्स का अन खरी पर मांगे फोर सीटर बने और बोलेगा संगे सामन गायाना से मांगे है खाइक फुटसल फोर सीटिंग फनरी हिट फॉर स्टर्कन ओग मेंदर अफंकल केयर फॉर एक्सटर्नल एनर्जी ब्रोनन एंड बेटर फॉरबिंडिंग टू द लंदन क्राइक इन प्रायोरिटी तक फॉरबिंडिंग है सलेम बे आज की को रो पन रो अन कन किरा किरा सो और काबले अरुबा में फरतराक भाईलाई मांगे बेटर फॉरबिंडिंग प्रे प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन ने फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जनवरी और voorzitterschap van de conferentie van de regeringsleider op zich. Toen betekent de 52 gereguleerde vergadering van de conferentie van de regeringsleden. Mensen bijeenkomen die van 16 tot 19 februari. Chaliga Uberiske. Or bolega Biesgoed worden 20 tot 25. Hoogwaardigheden bekleders uit de regio en daarbuiten verwacht daarnaast regionale internationale pers aanwezig zijn. Mensen melden minister van de Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking in het persbericht. Toen hier betekent je, maar piare gentaan, wil een betere verbinding door de lucht, over het water en over land moeten handel, investering, toerisme en vrij verkeer ondersteunen. Daarnaast wil Suriname kunstmatige intelligentie op de regionale agenda plaatsen. Mensen de technologie moet bijdragen aan beter gezondheid, onderwijs en dienstverlening. Dan hoop ik namelijk dat allemaal bij de Carigon goed moet gaan, mensen. Toen eerst hebben we aan het aanvloek om te dat Suriname, Guyana, Mange, Rikio, export kreeg. Toen voet kreeg we ja, Sauda Pani se. हमारी जनता हम और आगे मांगल जाए हॉफ प्रेसिडेंट जोन हैगा हॉफ के मतलब के रेक्टर के हॉफ फाउंडेशन प्रेसिडेंट जोन है प्लेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वारबोर्गन बाय द डर्ड रेक्टलक इंस्टेंसी के बारे में तो यहां बतावे हैगा प्रेसिडेंट जोन हॉफ के हैगा यूसीसी को हैगा इवान रूसाल बक्स हैगा बोले हैगा कॉन्स्टिट्यूशनल वारबोर्गन नोसाकलिक सेन ऑन द ऑन afhankelijkheid en deskundigheid van de voorgestelde derde rechtelijke instantie te garanderen. Toen je niet hebt, dan heb ik het betekend. Kies er maar Albina met wie een gerechtshof banawe. En ze zijn al bezig geweest, mensen. Rechtelijke maak als waarborg van de rechtsstaat. Roussal Bakska, bole president van de justitie. Bolehega stond ook stil bij de bredere betekenis van de rechtelijke macht voor de samenleving. Volgens hem vervulde rechtspraak een fundamentele rol binnen de rechtsstaat. Mensen, to i hem chota roep mee aapko bata dete he hem lukke hof van president joon he ou he iwan Roussal Bakks ke baare mein hamare pyare मीठा मीठा जनता। अब देखो भैया फैया पई के ओर जाएला फैया पई बोले दख देन मारोंस सामन हर देंकन एंड सामन पवन बोले हे जुका के जो मारोंस के सबन बोले जुका बोले उडोज और बोले हेगा फैया पई बोले हे दख देर मारोंस मांगे सबन साम साम हर देंक करे और वो बोले हेगा 10 तारीख अक्टूबर के सबन फीरी करेगा दख देर मारोंस यानी जुका लोग के दाग और बेसे भी सुंदर दाग बोले फिया पे बोले हेगा मांगे हेगा खस्किदनेस द क्राफ्ट फेयर क्राफ्ट एंड वार्डफॉल बेड्रागन आन द मारों गमेंशाप आन द ओंटविकलिंग फ्रॉम सुरीनाम हेट इस एन दाग ओम ओंसे ओउडर्स टू हरडेंकन ओंसे खस्किदनेस टू एरकेनन एंड मेट रिस्पेक्ट एंड वर्ट्रोवन नाद द टुकोम्स टू कीकन ओब दा वे फिया पे बनाद्रुक्त बोले हेगा समहोरिगेट वेडरसाइज बोले रिस्पेक्ट चाहिं करके नेशनल verbondenheid mange kracht van Suriname in de diversiteit van bevolking in ons verbogen. Betekent de geschiedenis van Maron is de geschiedenis van de moet mensen Maronske waren mange VHP samen jij je vieren keren over je baan aanplukken hem betaalde de Marons dag aan de wale हमारे जनता हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर और देश के समाचार आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे बेतलान के समाचार भी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे नीदरलैंड के कुछ समाचार भी आप लोग को हम सुनाएंगे ट्रिम्बल इंटरनेशनल स्ट्राफ ऑफ इन देन हाग लम लेखन में न्यू सांसद भैया ट्रिम यहां देखो भैया ट्रिम अपन हथौड़ी लेके जा है हथौड़ी लेके जा है आंस वीरल्ट लेडर अब मांगे देन हाग में जो हम लोग के देन हाग में जहां हम लोग बाटी समय पे जहां रेडियो फाहोन भी है हमारे जनता जहां रेडियो फाहोन भी है और वहां पे मांगे है ट्रिम नेशनल ट्रिपल इंटरनेशनल स्ट्राफोन इन देन हाग लम लेखन भैया फरेनक द स्टार्ट एंड सुकवार के एको सांसिस अनकोंदक करिसेगा जोन देन हाग में इंटरनेशनल स्ट्राफ ऑफ है फाहोन से बहुत दूर ना भैया थोड़े देर में पहुंच जाइए बतावे गए हैं बोले हैं इंडिविजुअल रेक्टर्स वार गericht is het nu bedoeling het straf voor zelf lam te leggen? Zo betekent je de staf mankeerde een ongekende escalatie in de strijd die Washington onder Donald Trump tegen de ICC voert. Amerika bolle he, waren ook bij zijn komst geen fan van de strafhof, maar gedoogden het in zekere zin wel. Toen hier wat hij mange lam leggen kreeg, Trump mange hebben ja, VS bolle hega op ramkoers met Europese bondgenoten. Het strafhof spreekt in een verklaring van een aanval op de rechtsstaat van de internationale rechtsorde. Op het AW hoofdaanklager Joningen Nashat Samin Khan besloot dat de onderzoeken en strafrechtelijke vervolging van de ICC doorgaan. De sancties volgen elkaar uren na de toekenning van een Nobelprijs voor de vrede voor de voormalige rechter Navi Pillay. Toen Hamara Den Haag ke baat he, John Bhaiya Trump mangi he. ट्रिम मांगे हैं हम लोग के इंटरनेशनल स्ट्राफ हों जो देन हाग में है ओके मांगे हैं सांसिस करे भैया आप देखो हम जाए तरी इटाली की ओर इटाली में भैया चोरी कौन की भैले ना सोना गहना भैया केती ना चोरी भैले गटाई में से जैसे सन्ना में जब देखो तो कोई के गटाई घींच ले जा तो कोई के घर चोरी कर ले जा तो का ले जा भैया यहाँ इटाली में भैया अगर योग नंबर टोस्कैन बोले है हुआ चोर लोन भैया देर तक दैसन बोतल वेन चौराई से इटालिया के और वो वारदे है उनका फिर 5 मिलियन यूरो के भाई देर तक दैसन फ्लेसन वेन चौरा लिए ना जे भी में चले के चल गए मौसी को नो बड़का चीज है ये चीज भैले सोंदा के रात के भैल है बेहद वेन हाउस बतावे है जेकर नाम मार्शेसी एंटी नोरी इन कोर्टोना में चोर भगवान साथ मिला से गए हैं मिनिमल मेंशन से इंफॉर्मेशन गए हैं और बोले इस का करी से अलार्म सिस्टम ओम सेल करी से फेल है इस कैमरा एच काकल करी से और बतावे गए लेगो हेफ्ट रिक से वेन घरवा में और बोले वेन वन चोराई से दुई फराख वाहन लादी से भैया दुई फराख वाहन लादी से और बताए गएगा द दीप स्टॉल वेयर सो मार के सब ऑन डेक करी से जब कम करतन गए वेन हाउस में देखे वेन हाउस सब खाली है नानी बोले 100 ट्विन तक तो 300 यूरो पर स्टक एक बोतल बिका है वेन वन तू जाने महंगा महंगा वेन है इटली के नली दल वाला भैया 500 रुपया में जोन पाए जइयो ऐसे चीजवा ना है और बताए दस स्टोलन फ्लेसन सेंट यू 120 एंड 300 यूरो और बताए गए हैगा इटली बोले यालक्स वर्दन एसएस 100 तो 400 डजन फ्लेसन वेन खमा और बोलेगा चेसी अंतिनोरी डायरेक्टर रेंसो कोतारेला बोले सोचे है कि चोरवन को मुई से फुर भरित रहा और सब कुछ ओम सेल करके और उतरा ढेर बोतल वेन और लो चोरी करके और भाग गए है हमारे प्यारे प्यारे जनता ये सब बहुत सोचने के बाद है कि चोरन कितना चालाक हुई गए है हमारे जनता तरी हम जाई भैया तरी हम जाए अपन यतन के ओर भैया रोप यतन हम लोग का प्रेमी ही है दनहाख के बोले है एट दिस क्रूशियल That the for the America aangekondigde the sanctie niet direct in werking treden, zegt premier Rob Jetten, dat heeft essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het en EC internationale gerechtshof gebaard met je en de sancties zijn zeer betreurswaardig, al dus premier van ons Nederland en dat is meneer Rob Jetten gebaantje. Hamare janta ho रहा है तो नीदरलैंड के आप लोग को जरूर हम समाचार बताएंगे अब देखो भैया असील सुकर के बांची जो हुए हैं नीदरलैंड में तो तू जाने ही आके रखे रहे असील सुकर के स्वर्ग करे के एस्टा प्लास धरी से मौसी लड़कन आजकल घर द्वार खोजे ना पावे लेकिन असील दुकर के सब कुछ मिले हैं तो यहां बताए फनी नखी फनी लांस खमीन तन जो नहींगा फियन की बोले अप्रूव करे हैं बोले कोर्ट टर्मेन में बोलेगा ऑफ़ आन ते बीनर फॉर असील सुकर इन द नाख फॉर डोंडरडा गसुके हैवन टींटाले मेंशन बुइटन हेड अनमेल्ड सेंट्रम टेर आपल गस्लापन और बोले द फरेनिकिंग नूम दैट स्क्रेंडलन और हमें इतरा ढेर हम लोग के देशवा में का बोलेगा दखलोसे है आदमी जोन लड़कन जोन है घर ना कीन पावे है ना रहे बाप माई के घरे कमरा खोजे ई खोजे ओकर बारे में ई सब कुछ करे ना है भैया और अब देखो ना बोलेला कि सब के हेल्प ना चाहिए करे के मर देंग ओ बीच अन्य एक मेंद तुलन जानो भैया फिर वेरक तो ही जैसन 25 से ना माखे दागे के दत वेते वे इन नीदरलैंड में से दस न्यू रीगल्स आल अब देखो यहां क्या हो रहा है लंदलक बोलेगा इन लीफर्ट अक्षी भले फिर वेरक के मेयर दान 25 तो 100 किलो बोले आदमी लीफर कर चुके ले और बताए गए एगो कंपनी से बन स्टार्ट करी से ईस्ट लंदलक कंपनी है जो आदमी जाए के और फिर वेरक लीफर कर सके इस समय पे ऑनगवेयर 7650 किलो फिर वेरक सब लीफर कर दी से यूसीसीएन पुलिस के फैलाहित के मिनिस्टर बकेन करी से बोले स्लाइट इन फाइनल 35th लास्ट इन लीफरपॉइंट इन फ्राइडेग इज इन होरन बताई गई हमारे जनता सोलह में 528 किलो लेवार्दम 609 किलो बन लीफर भैले तरनुइसे में 11 किलो फेनलो एमन तिलबुर मास्टरिक देन हेल्डर देन बॉस अलमेर ब्लीफ ऑन हुफेल है ऑनगेवेर 100 किलो हेड ग्रोस्ट डेल इस 6,500 किलो बस्ताद एट अन कंस्यूमेंटर फ्यूरवेरेक दैट मॉक बाय द फॉरेक्स यार विस्लिंग नॉक worden afgestoken, maar is bij de komende oud en nieuw verboden. Verder leven de mensen bijna 600 kilo vuurwerk met flitspoeder in. Zoals strijkers ook kwam er 500 kilo noodsignalen. Totalon jano he apke parisse hamlok ke Nederland me hier vuurwerk nama gedage ke. Karen ke bahut slachtoffer hoe he. Oto botom aange dheer lage he. Aur itra leifer mel maam jane labe bahut dheer bahere hoi bhaiya. Jab demonstratie hoe he. Tatu apre jane he. अपरे जाने हैं कि कितना डेमोंस्ट्रेशन में सबन बहरे डागे हैं सिपाही के ऊपर सभी भीगे हैं देखो भैया अब हम जाएला सूडान के ओर सूडान में एक ड्रोन अनफाल भले हुए है जहां पे 26 सेशन ट्विन तक औरत और चार गो लड़का मर गए भाई एकर बारे में हुआ के खुफने लोकाल के बकेन करी से और बतावे हैगा कि पैरामिलिटर जोन बा RFS हैगा दी आल यारन अन ओरलोग उटफेक्ट में ने रखेरिंग्स लीडर वो एक पैरामिलिटर हैगा और उस सब रखेरिंग के सूट जाती से लड़े हैं बोले अनफाल करी से गोरी यू के हुआ नाम बा वात अल माही और बोले वो खरें से इथियोपिया के बोले इन दत लैंड वर्ड सिंस कोर्ट को फोक्तन भैया जैसे येमन के हुतूस लोन जो हुआ पे दागे हैं यॉर्डानिया में तो इसने यहाँ पे सबन इथियोपिया में सबन रखेरिंग से दागे और बोले स्लाख्तोफर भैले दो दो ड्रोन अनफाल जहाँ पे जवान जवान औरत मले ले यंग फ्राउन दी वर्कन आने सैफरन फान खोड कोलंपियस फ्लग बैटन है फ्लग काम वार से वोंदन और बताई गई है 2023 में 200,000 आदमी मर गए रहा बहना 20 मिलियन आदमी सेन ऑफ द फ्लग खसलाखन से इस सब चीज भैल है सूडान में भैया नीदरलैंड में श्रीराम के आदमी बहुत सुने हमारा न्यूज हम जानते हैं तो आप लोग को बताएं कि सूडान में ये चीज भैल है और जॉनी आप लोग को पूरा दुनिया के समाचार को सुनाते हैं बताते हैं सूडान इधर ही तो हम एक ऑफ द होस्ट सैन फ्रॉम द वर्ल्ड की कौन सी हुए है दुनिया में हमारे जनता देखो भैया अब हम जाई है तरी सेलेंस्की के ओर यूक्रेन के बड़का स्काद भैया स्ट्रोम ने दुन अनफल रुसलान करी से यूक्रेनी ना इनम अनहार हो गए भाई डामों पे स्ट्रोम ना है रूसी अनफल कैसे यूक्रेन पे ओकर इलेक्ट्रिसिटी नेट के और खबरें स्काद भई लेगा खबराख एकर बारे में प्रेसिडेंट सेलेंस्की जो है वो बतावे है बोले हेयरस्टाइल वेरा खाद क्लॉक रोंदोर सबन बनावे माम बेना लोग भाई लिया बतावे है बोले रूसलान की फोर्स इन अस डिफेंस स्ट्रोम वांटेड एंड फॉर वार्मिंग अ लंगर अस डूल वेट फॉर द अनफॉलन विद ड्रोन्स एंड रॉकेटन हेड लैंड इज एरोप om die plat te leggen en Oekraïne komende winter in het donker en koud te zetten, staat in de Russische plannen waaronder Kiev volgens de New York Times de hand zou hebben gelegd. अब हुआ बिचारा लोन अनहार में है और रूसलान के पुतिन जो है हे ब्लाइव मार दी ड्रोन स्कीटर एंड स्कीटर अनफाल दून ओप सेलेंस्की से लाउंड ओक इने के बांचित है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता आपको ये सब समाचार हम सुनाते हैं तो हम सोचे आप लोग को एक गीत हम सुना दे तो गीत के बाद में तो हम अबे चले आएंगे और जब चले आएंगे तो हम आप लोग को और आगे को सुनाएंगे कि क्या क्या और कौन से समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों

न जाने क्या न जाने दोस्तों कि दिल कहाँ खो गया है, लेकिन हमें तो मालूम है कि आपके दिल जो है रेडियो फोन पे आकर लग गया है।

हमारी जनता हम, तो हमारी जनता हम जा रहे हैं फिर से सूरीनाम देश, और सूरीनाम देश के समाचार आपको हम सुनाएंगे भैया। आज काल जो है चोरी चपाटी रूफर्स लोन बैसिगिरी ब्रोफिस पे भी चले सरना में भाई। अब देखो दुई को क्रिमिनल भैया दोंदर दाख के रात के दिन धूफरे नानी दिनवे के कला काल ब्रांस त्रांस नाम में दिन दुपरे भैया ओवर फाल करी से हाँ सेशन फाइव तक यार के एगो से बे के हमने फांद कौन तक स्लुटल्स फंस विद त्योता ओकर ओतो के बैसे का बोले चाभी ले ली से एगो त्योता हैरियर भैया दरनास ओके सोना के आला कुंद्रे हाउस केटिंग रहा एन अ रिंग वेखन उमन हमने नहीं कैसन केती भैया आला कुंद्रे हाउस केटिंग सुना में सबन मोटा मोटा केती पहर के चले भाई हम तो दरफ ना करीला घड़ी पहर के चले के तो हुआ पे एकर केती अंगूठी सब ले गए हमने नूरिया काट के ले गए निकार के ले गए भाई मैं तो जाने सबन मोटा मोटा पहर के चलावे है पहर के घूमे हैं तो तू तो भैया जहाँ शुक्रू है वहाँ पे चूटी बहुत ढेर सर नाम में घूमे जो चूटियन रोके लपेटी तो तेई अगो सेसो फिर तक यार रख दे एन फियर वेसला ऊपर से दे एन फियर अब देखो चक्कल भैया अपरे दे एन फियर भाई और बोलेगा फैल खैद के आदमी बा ही के चौराई से गहिया बतावे हैगा फन है व्यर्थ स्वार्थ मोबाइल टेलीफोन सेल फोक में इखनो में ते पिस्तौल वा दियन फई वा अपन कहां धल ले रहा द फरदख्तन वारन ख वापन में पिस्तौल और बोले हैगा ब्रोम फिश पे रहा और शफी दैट मॉन्स्टर आदमी सब चलावे जात रहा एकर बारे में अनका बोले सिपाही हरमान गुदिंग वेर कोरना कोरदा ना खमेल मेलने खमा और बोले सिर नाम से पुलिस में अंडर शुक्र माना लिखले की इदियन फी अरवा भैया अपन पिस्तौल वा काहे ना निकार के चोरवन के तू फैला खै के आदमी बाटे दिन फैला खै के और अपने आप के तू फैला ना कर पहले दे एन फियर एन बुरखर है तो ये बात है ना बताई से कर बारे में कैसे तो रिया है हमारे प्यारे प्यारे पुलिस नीम आन खपास्ट ब्रॉम्फिक्सर एन ऑन देलन बसला इन रिहो वेस्ट में भाई तो एक बारे में अबे मौका मिली तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे कि चिचुआ कैसे है हमारे नानी। अब देखो यहाँ सबन बोले है वेरल बांग बोले है सर नाम के एक नोमी जो है त्वी दैसन अख्तन त्विन तक में बोले स्नेलर खुरियर हुई दाना गयाना से एक हो दात में से वेरल बांग में कर्जा लेवा है तो वेरल बांग की बतिया बोले है वार है कि ना भाई अल्लाह तो ये सिन वन विवेत अलमाल हु द सुरनाम जैन दी द इकोनॉमी दान द्राय सर नाम के इकोनॉमी बोले फरवाख करे तो इधर इसन अख्तन तुंते में गयाना से ज्यादा बोले कि खुरुए हुईगा और बोले हैगा अन अन Latijns Amerika en het Caribische gebied van oktober 26 mee. De Wereldbank nam de reële economische groei van Suriname in 28 op 21,5 tegen 15,3% van Guyana. तो अब इच वार है कि ना वार है लेकिन बताना हमारा काम है ना तो दार होप में से दत एक नोपी फन सुरीनाम नो हार्डर खात हुई है मार दार बैन एक बीच बांग इरफान ओम दत वे हैव गेन फरत्राउ मेर दूर ऑल द सिचुएशन सो फेल लीनिंग एंड सो फेल मा वेर बांग दी होत ऑल इन द खात बेस्ट मेन से और बता दी सुरीनाम के कोर्स 41,25 एसआरडी 1 यूरो पे और जे यकीन है तो 42,15 एसआरडी है और जो यो अनकीने तब जो यो बेचे तब 41,25 है अमेरिकन डॉलर है 37,50 में से जो यो तब बेचे तब और जो यो कीने तो 37,80 हैगा $1 के बांचित हुए है हमारी जनता मीठा मीठा जनता प्यारे प्यारे जनता स्वीटी स्वीटी जनता तो हम चलते हैं और आगे भैया समाचार को लेकर यहाँ बताए गए हैं हमारे नानी
सरनाम के परमारी बहु नोर्द के अजमी भैया बहुत जबर कलाख करी से कलाख्त करी से बोले उस मांगे है जितना प्रतुष्टी है जो औरत या मरद हुआ धंधा करे आज का मर्दाना भी सरनाम में धंधा करे भैया या नीदरलैंड में भी भैया धंधा करे मर्दाना जो समझा बोल सके खाली औरत प्रतुष्ट हुई है सर ओक मानंद गेस दिदुन ओक अलमाल अन ओ फरल नाम लग अन अन अन प्रतुष्ट हुई वैरक अपन शरीर बेच के पैसा कमा है तो यहाँ बातचीत हो रहा है परमारी बो नॉर्थ विलन आन पाक प्रतुष्ट हुई दृष्टि में नाली तय एन ओ फरलास परमारी बो नॉर्थ में बोले है वहाँ पे बोले बड़ी ढेर प्रतुष्ट हुई है और वहाँ पे रोफ हुए सब एक नाम बोले है का बहु नर्स जो परमारी बो नॉर्थ के है उसका नाम है सो का नाम बीरती क्रुतु नेंगने में बोले हिंदुस्तानी में बोले है कैसे बोलिए भैया जैसे कि पंचायत हिंदी में सब बोले है इसे बिरती क्रुतु होवे है और सब आंदाख मानी से लीव वान है फेल है इन हिन वोनिंग ओमखीफन आंतस्तास्तन बोले एक एलिखाल बहु हुए हैं डाम पे बोले स्त्राद प्रतुष्ट्वी हुए है दृक्ष बिका है क्रिमिनालिटी थे बाजा बहुत जोर बजे खलत ओफला से एंड अनवीचक है फन खोत ओपको बदरेफन बहुन तो द मलंग रेस तो अंडरवेयर पर तेज से बहिन कोम्स ऑन द ओर द कुमन जो सोना की ने भैया ओ सब ये आइला और एकर बारे में जो जो ने मतलब कि अन इनिशिएटिव नहीं मरेगा आ रिस्टो केली बोले हैगा साकन इंटरव्यू प्लाट फिंड द ड्रिंगन ऑन द फर्दीनर तो हमारा भैया यूसीसी के मिनिस्टर और का नाम है भैया मनोरथ हनीस मनोरथ के चाहिए कि अंदाज करे कि जनता अब बोले है हम लोग के भीड़ की बहुत ऊपर लास हो गए है एंड हियर मुतत वेल ऑल इस कदान वर्द और ट्विटर भी फरकादिंग में बोले है बीरती क्रुतु परमारी वो में बोले इस बेन कोट फॉर के इवैल्यूएट और बताई गई ऑथोरिटेट अनुवीक्षक में ओवरलेक हुआ के डीसी मार्लोन बुदिका आयला ब्यूट मैनेजर आयला टीम वेक अखेंट आयला एर लीडर आयला हॉगवार्ड बकलीडर्स आयला और बोले फोल्कस केली इस बलांगरेक दर बोनर्स इन ऑथोरिटेट का सामलक बस्प्रेकन वेलक प्रॉब्लम में मुतर वादन आंखपाक ऑन द फेलिगेट एंड लीवरहेट इन द वेक फरबेटरन ये बात हो रहा है भैया कि अप्रेस अब जनता अपन फेलखाई खोजे है हमारा देश के जो ने वहां की अनुसूची है या रखेरिंग है उस सब के ना देखा है कि कौन भीड़ कहां उन फेलख है कहां इस सब चीज होवे है एंड देन मुद वीरती वीरती क्रुतु ब्यूर हियर ओवर gaan praten is niet slecht mensen, we moeten dat allemaal kunnen doen, maar er zijn ook heel veel problemen in het land die niet aangepakt wordt op door bepaalde instanties. Als je namelijk verantwoord bent van jouw eigen dingetjes, dan moet je wel de verantwoordelijkheid nemen om dat goed te laten doen. Als je aap namelijk ki koi dharm ke baato aur to haar dharm mein koi misbruik kare hai to sabke recht hai wo apan dharm ke raksha kare ke awaaz uthave ke ki hamara dharm mein kuch gadbadi na chahi hove ke ya christian ho ya hindu ho ya sanatan ho ya arya ho ya je bhi ho tumhara apan dharm ke bare mein sabke apni khuye manier awaaz chahi uthave ke aur agar aur khani सासिक अदमी बाटे ना मुझे जीकर ओग में दून ओम दात नेचस एन खुद तलांत aflopen, niet persoonlijk voor één persoon of twee persoon, maar in algemene belang moet iedereen deze aardje buurtkruutu gaan pe op een aanwaas uitraai se ke hamara gauw me hamara jagha pe protestwee hove drugsdeal hove he khalais overlaas hove hega aur kakana hove he en daar hebben ze aandag gevraagd aise chahinga sab koi ke kare ke chahe Suriname he ya Nederland he aur India he sagro to hove bhaiya कहे हमारे सुरिनाम में ना हो इसके बदलों भैया खेतियर की ओर अखरा अने अराख अने का बोले खेतियर हाँ अनुर सालीम बोले हैं
बोले खेतियर भैया फरांतूरलक फॉर फैलक फुचल खेतियर के चाही खेती बारी फैलक कर ओकर ओकर फरांतूरलक दवाई ढकले रे भैया और भाटा में कोरो में महिया बोले अरहार का बोले अने अने अने लंग बाउट स्पील मलांग रे का रोल बेड बस्केरिंग फॉर अ फॉलोसनाइट ऑन यूज इट ongecontroleerd gebruik van een pesticiden kan leiden tot schadelijke residuen in landbouwproducten. Waarmee minister John LVP ke ohe de heer Noor Salim ekar bare mein boli si ki khetiyar ke chahi apre dekhe ke कि कैसे है कैसे ना है हपा सौदा में हम कितना कितना दवाई मारब और कितना दवाई इन्ना मारब ये बातचीत हुए है हमारी जनता हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता। अब देखो भैया यहाँ पे बतावे सूरीनाम से नीदरलैंडर भैया सरनाम के नीदरलैंडर यहाँ आम्स्टरडाम में भैया खलीफी देर तो भैल है हाँ एक फिर देर तख्त यारख ओकर नाम बा किशन कुमार आज केस बाबूराम अन नीदरलैंडर फा सूरीनाम से और शीन इस इन द नाख शुक्रवार शनिवार के रात के सभन ओके काफी साउथ पाउलो में जो आम्स्टरडाम से फील वेक में आम्स्टरडाम में ओके सभन डाक के माढ़ारी से कोर्ट टाइट लाटर वेट एंड 32 यार का फरदाख्ते इन अन वोनिंग आंखाउदन द पुलिस खात एक अन दुल खरेक लुकिदाची ओबले बाबूराम वेद

पोशब्र जो मशहूर है आदमी जो खुद खुद मरे हैं और हमारा हंसू के लोग जो है बहुत खबर माग करें यहाँ से आदमी जहाँ घूमे तो उससे ही कर जा है यानी कि बोशब्रुक पे एगो रिचराई करे बकी भैया बेशब्रोक पे भैया पेड़ जमे लगा।

है ई देखो कौन चकल्लस भाईल है तो सोचो श्रीनाम के बोशे बुरुक पे भैया पेड़ जमे लगल है ना मोई मोई कोई खाद बोई से भैया अंदर हो ना होवे है बोले है इतरा फरकेस दृक्ते कर बारे में एनडीपी के पार्लियामेंटारियर जोन है और वह इंग्रीड कार्ता बिंग बोले है मंगलवार के आंदाख मांगे है कि इतना जबर फील है बड़का बड़का ट्रांसपोर्ट ब्रेक हुआ त्रिक लोन पास हुए सिपाही लोन हुआ फिर के रीखल करे तरी से लोप हुए मैं फिर भी बोले बहुत ज्यादा बोले है गफील है 5 किलोमीटर ऑन खफीर बतावे और बोले से मेरकत इन मिडल्स के बुड़किया के नीचे भैया पेड़ जमे है पलवन पे ओ वे के बोली से ओ पंबार वेर के बोले ओके जाओ तुरंत तरी जंगलियो तो सफा करो पेड़ के नीचे जंगल हुए पेड़ जमे लगल बुड़की के नीचे रेला अनवरी खलमा तक वोट ख इंस्पेक्टर एंड ऑफ स्कोन मार्क बुरकान वार्डन uitgevoerd gaat het over de Oost-West-verbinding, 5 kilometer lang, vele mensen. En dat is wel, geef ik deze mevrouw, natuurlijk voorkeur. दोस्तों हमारा समय आ गया है जानिको और 1 घंटा का समाचार आपको हम सुना दिया है सुनने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नाम है जॉनी लास्ट बोले भैया मदुरा एंड एखनोतर स्केरन में सर 5 बरिस के जाल ना न्यू अनखलाक वेसर मार्टलिंग के बारे में ये आखिरी समाचार हमारे थे आज के हमारी जनता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार और प्यार भरी अदाब सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है और सलाम।

और दोस्तों आज कुछ चटनी सोका हम चलाएंगे, कुछ गयाना क्या और कुछ सुरीनाम के भी चटनी चलाएंगे, और यानी कि त्रिनिदाद के बाद हम चलते हैं कविता रामकिशुन।

हरिओम, मैं खिदम भैया बीरबल के स्टाइल में। कैसे रह लो आप लोग? पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा हुआ प्यार, नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल कीजिए हम लोगों का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोग का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादित्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो, सरनामी संगीत और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, यही अशोमी लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, घर पे हो, या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी मंडे और हैप्पी हैप्पी वीकेंड होना चाहिए, हैप्पी हैप्पी संडे ना तिलक। और आप सभी को हमारे फूल टीम के तरफ से एक शुभ नवरात्रि भी। हो सकता है कि आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, जिसे तमाम लोग इस वक्त नवरात्रि मना रहे हैं, और हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी की जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयाँ बधाइयाँ, खुशियाँ खुशियाँ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएँ, नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए, खास करके नवरात्रि भी चल रहे हैं तो जोर तोर से लोग भक्ति भाव करते हैं। तो आज देखा जाए तो 11 अक्टूबर तीन दमांत हो गया है, 11 अक्टूबर फ्रॉम तीन दमांत सोंदा मिदा का ये हसीन प्रोग्राम, साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे सरनामी संगीत का आप सुन रहे हैं। अगर आपके घर पे एक दुक्का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। अनित फरखीत है, जिंदगी के मजे रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी को भी सुनते रहना, और थोड़ा बहुत तो हो सके तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फन हार्त बेहतर खाओ, कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और अगर आप हो सकता है ना कि आप कल परसों या आज कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है, दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ड्राव थ्राव जोर जोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी दौड़ दौड़ के जल्द से जल्द आकर आपके कदमों को भी चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, रहता है वो तो ओवरऑल खलेर थे नेवर गिव अप ब्रदर नासीसा। सो सो लो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अटली बेनंट फॉर इट लाइस्टरन। इसमें प्रवेश हुए तो सुस्वागतम फेन फकंसी ब्लाइव लाइस्टरन आर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो या खातर सीकर लोग फिंदे दैट मीन वे वो। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के कुछ और ज्यादा गर्मी के खोज में जा रहे हैं, तो आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा फेन फकंसी खनीतर फम। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहर द्वारा, ओपन टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। So bent you and blive to find alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat neem ik aan, dat is
वन एंड ओनली हमारे ध्यान अक्षर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। साझे प्रोग्राम का शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ एक फिल्म ललकार ने कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यार ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा भी कहते रहेंगे कि हम इंसान हैं कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है एनाटिलिक मैथ हिल फे लिफ्ट खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है यारो। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जहां पर भी जिस हाल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश करते हैं और साथ ही साथ एक शुभ नवरात्रि नतिलक सभी भक्त प्राणियों के लिए। तो कुछ जरूर सुनाऊंगा दुर्गा माँ के बारे में सभी माताओं के बारे में। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना। हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू एंड नतिलक एक बार फिर शुभ नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।

पीले सजालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज के साथ। साथियों, आज का इस हसीन शाम का मैं शुरुआत करने वाला हूं, जो आप सभी के नाम है खास करके। और आप सभी तो जानते हैं, आज से नवरात्रि भी शुरू हो गया है, नवरात्रम शुरू हो गया है। तो सभी भक्त प्राणियों के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर लीडर श्रीमान कुमार गिरव और श्रीमान शिव चीतन जी की तरफ से, साथ ही साथ ऑल ओम रूपर्स ऑल मीड वर्कर्स की तरफ से आप सभी नवरात्रि मनाने वालों के लिए एक शुभ नवरात्रि। और आप सभी के लिए हम लोग विनती करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं, नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। और आज की शाम में लाते हैं हमारे हॉलैंड देश का जबरदस्त गायक, जिसे हम लोग प्यार से द किंग ऑफ बैठक गाना के नाम से भी जानते हैं, बुलाते हैं। एंड नतीजुक इस है एतवार, कल में एक महफिल में था, तो ये महान कलाकार संदीप जी के मौसी के दो दो बेटे के जन्मदिन था, दैर्त ख्यार सेशन दैर्त ख्यार एंड हिंस एंड ओक द टॉपर्स एट बैठक गाना सीन। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट सिंगर रमन अमनू, जिनका 30वां सालगिरह था, और उनका बड़ा भाई नरेश इस ओक सेशन दैर्त ख्यार को और तालमाल हेल टैलेंटेड यंग म्यूजिकांत एट बैठक सीन, खास करके जो मिडिलस्ट ब्रदर ब्रूच नतीलक विराज मास्टर ऑफ द ढोलक, देवेंद्र सिंह सिवनाथ के छोड़ के सभी जबरदस्त गायक आजकल के जो बैठक सीन में इन द टॉप 3 वहाँ उपस्थित थे। कुछ बातें शाते हुए, कुछ गान बजान हुए, तो ये महान संगीतकार के आवाज द ग्रेट संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर माता जी के भजन आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, खास करके नवरात्रि के उपलक्ष्य में जय माता जी की।

0: बात है, जबरदस्त गायक द किंग ऑफ बैठक गाना फ्रॉम हॉलैंड, नौजवान और महा कलाकार द ग्रेट ग्रेट ग्रेट संदीप बदलू जी उस्ताद का उस्ताद के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे और ये भी फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। और आप सभी को एक बार फिर एक शुभ नवरात्रि फुल टीम के तरफ से। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। हम दद प्रोग्राम आल गमाकत वस एन दिट स्टोंड आल ऑफ माय लाइफ। एक बार फिर वही महान जबरदस्त गायक द किंग ऑफ बैठक गाना को लाते हैं और वो सुनाते हैं आप सभी को इन फन से न्यूज अलर न्यूज नंबर हर जैया।
1: बड़ी शर्मीली है, बड़ी है छ

Shabbos, the king of baked Ghana from Holland, Ustad Ka Ustad, Maestro Sandeep Badluji ka bilkul naya song aap sun rahe the. Pure 20 minute guzar chuka hai, 5:07 रविवार का शाम का प्रोग्राम 11 अक्टूबर 2020 का यह हसीन शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जो आप श्रोताओं के सेवा में लाइव प्रस्तुत हो रहा है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार को आप सुनेंगे, जिनका कल जन्मदिन था, और वो जन्मदिन के बारे में जो मैं आप सभी से भी कह रहा था, वही दयार खियोप को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं आप सभी को ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान। ओकन हिल योंग उस्ताद है, मास्टर ऑफ द बाजा ऑफ द हारमोनियम एंड ओक वतन स्टेम। सुनिए, फूलों से तुम हंसना सीखो।

आकाश दियार क्योप आकर आप सभी के ये अति सुंदर बयान को सुनाया है नतीलक हॉलैंड और सुरीनाम के तमाम संगीतकारों की तरफ से बधाइयां ही बधाइयां जियो तू सौ सौ साल उस्तादों का उस्ताद रमन अग्नु जी के जरिए अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का फ्रॉम द बैठक पावर एंड सोम फन माएस्ट्रो राजू सिंह गुलाम लाते हैं आप सभी को अमित सिंह गुलाम जी को और वो सुनाते हैं अति सुंदर बयान ओइट खिसोंग दो रॉय रामाधीन न्यू डोरहम सबेरे सबेरे

वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना हमारे ज्ञानियों के लिए, और जो कुछ ज्ञान बिटोरना चाहते हैं उनके लिए भी ये अति सुंदर सुंदर से ज्ञान से भरी हुई बातें। तो साथियों, पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर बातें सिद्धांत के रूप में लिख कर छोड़ गए हैं। कुछ जीवित है, कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं, और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यश अमीर लेकर के इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे। दूसरा गौर फरमाए। अर्ज किया है महाज्ञानी श्री आइंस्टाइन जी ने, और वो कहा है कि स्काकन इज एट स्नेल्स द स्पेल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन दैट मैन मेट एल्क सिकोंड डजेंडन गेडाख्टन मुट ऑर्डनन। तालमुत जी ने कहा है साथियों कि यू फ्रिंट हेफ्ट एन फ्रिंट एंड फ्रिंट फॉन यू फ्रिंट हेफ्ट वेर एन फ्रिंट वेट ज्वेगन। एली हिल्फर्सम ने कही है, ये मुत मेर लेर एन फर्ट्रोवन ऑफ ये एग एरफारिंगन एंड वारनेमिंगन एन इंटुइट्सी एंड नीट डेंकन दट ये अलस आउट द बुक मुत हाले। Hermans beroemde cabaretier ne kaha hai, alleenstaande dame zoekt zittend beroep. Eentje van Winston Churchill die ne kaha hai, voetbal is een herensport gespeeld door beesten, terwijl rugby een beestensport is gespeeld door heren. Grote voetballer van Nederland, Nick Haai, Simon Johan Cruijff Gine. De tijd dat ik zelf geld meenam, is al heel lang geleden. Ik neem altijd de naam en het gezicht mee. Nog eentje van Winston Churchill. Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben, is één van hen overbodig. Thomas Fuller ne kaha hai saathiyo ki wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd. Een hele goeie. Wanneer de kalf verdronken is, denkt men ook de put, hè? Hammer, eentje van Hammer. Wie een weldaad niet met dankbaarheid vergeldt, vertroebelt zelf de bron die zijn dorst heeft gelest. En de laatste van vanmiddag, kaha hij nog eentje van maestro Johan Cruijff. Ik neem altijd zelf de beslissingen. Dus als ze bij Ajax tegen me zeggen, je bent te oud, dan zeg ik, dat beslis jij niet, dat beslis ik. तो भी आप कुछ ज्ञान के बातें सुन रहे थे, कुछ ज्ञानों ज्ञानियों के द्वारे ये अशामी लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम आगे को बढ़ाता हूँ। 4 मिनट गुजर चुका है, 5:30 बजकर, और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। पहला अध्याय में हमेशा की तरह कुछ बैठ गाना, कुछ चटनीस, और दूसरा अध्याय तो भी बाकी है। अगला बयान एक ट्रबल और डबल चटनी ड्रिप बनाए हैं दो छेदियों ने मिलके, रोहित महाबली और रोहित छेदी, नाने दो रोहित होना चाहिए ना, दो रोहित अल्स फोर नाम, रोहित महाबली, रोहित छेदी और संगीतकार सेलेक्टा बीट्स के साथ ये अति सुंदर बयान आप
सुनिए स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Kiamat, hei, shama, shama, de twee Rohit se ne mil kar ye thi sundar chutney ko tayar kiya hai. Rohit Mahabali aur Rohit Chhedi ne mil kar kaam kiya hai samamet producer Selecta Beats jo aap abhi sun rahe the. 41 minuten over 5 हो गया है साथियों, रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं. अगला बयान फॉर गेजेलिगेट eentje geproduceerd produced by AI Technology, AI Technology, जिसे लोग कंस्मार्ट इंटेलिजेंसी के नाम से भी जानते हैं. Alles is gemaakt door één iemand door middel van een computer, maar klinkt als een huis. Sajanoa ghar avere, chutney Surinam style.

0: शाबाश जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश के अगर 70-80-90 tot 2000 in Holland ook heel veel opgetreden. Over हमारे बैठक गाना सीन का उस्तादीन और जबरदस्त गाने वाली श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी के ब्यूटीफुल आवाज में जी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। तो आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम पहला अध्याय में का आखिरी बयान आप सुनेंगे और लाते हैं प्रोग्राम में नौजवान कलाकार सूरीनाम देश से आया और हॉलैंड देश में आकर कितने को टोपी पहरा दिया। नौजवान कलाकार डगड़े सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग धोबिया के सपना।
1: मर जाइए धोबिया मर जाइए।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 11 अक्टूबर 2020 का हसीन रात्रि का प्रोग्राम सोमदा आफंत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 4 मिनट गुजर चुका है 6:05 साथियों, हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतुलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, ससलो बिलो बियॉन्ड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, अनतुलिक बदंत फॉर हेट लॉयस्टर। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे दैनिक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अब मात्र हम लोग बनाकर और जितने बार चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यार, और आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलफामांडा तक फ्रेडाइनस कांतोर उर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कांतोर 0703562247 और स्टूडियो का तार का नंबर है 0703562277। जो भी रेडियो का काम होना देन कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोग के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना है ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश भी निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी आप तार करे पर मांडा टॉट फ्रेडा टेनिस कंटोर यूरो ओप कंटोर 0703562247, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider van Fahun Hindustani Radio, the one and only maestro Johnny number one. To aap bhi hum logo ka member bane aur ro ko bhi banaye. En zoals jullie allemaal weten, elke laatste donderdag van de maand vanaf 6 uur 's avonds live karaoke op de radio bij Fahun Hindustani Radio. Tojaru Sundirena. Volg onze social media's en ook van onze omroepers. Daar zullen we goed idee kringen waar wij binnenkort voor u live gaan optreden. En dan bent u ook natuurlijk van harte welkom. अभी आकर इस छोटा सा मोटा सा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार जो बनते जा रहे हैं, उसमें आप भी आकर शामिल हो जाए, शामिल हो जाए, शामिल हो जाए। सभी जानकारी 0703562247 पर आप तार करें। वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं प्रोग्राम की तरफ आप सभी को। जिसे आप सभी जानते हैं, आज से नवरात्रि भी शुरू हो गया है, तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्ट लीडर श्रीमान कुमार घिरौ और श्रीमान शिव चीतन, साथ ही साथ सभी ऑमरूपर्स मेड वर्कर्स फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से तमाम दुनिया भर के नवरात्रि मनाने वालों को एक शुभ नवरात्रि, और माँ अम्बे से हम लोग यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक इरादे नेक मनोकामनाएं सभी पूर्ण होते जाए। जय माता जी की। और इसी उपलक्ष्य में आप ये अति सुंदर माता दुर्गा जी का भजन सुनिए, सुनाने वाला है आप सभी का मनचाहा गायक हॉलैंडिस का द लायन ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ उस्तादों का उस्ताद।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तो प्रोग्राम में मैं ला रहा हूँ मेरा ही गाया हुआ ये अति सुंदर भजन, जो खास करके मैस्त्रो ज्वाला लक्ष्मण जी ने तैयार किया है। आने वाले दिनों में ये निकलने वाला है स्टूडियो वेयर के साल ऑफ। और श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूँ देश भजन है भी खोप खदरा खान में मुडर मुफ्राओ रुकमीन भानमती भगवान दीन चीन कुराई, उन्हीं की याद में छह भजन में बनाया हूँ और आने वाले दिनों में ये निकलने वाला हूँ। एंड इट वॉज द लास्ट। तो आप सभी को ये अति सुंदर भजन, और मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ एट लास्ट कुप्लेट हैव एक सेल्फ स्क्रीफ तैर नागदाख्त ने मै लिफ मुडर। तो ज़रूर सुनिए और आपको अच्छा लगे तो यूट्यूब पर आप जरूर इनको दिल भी कीजिए। मिल के सुनते हैं सुरेन भगवान दीन के आवाज़ में, यानी कि मेरे ही आवाज़ में।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो ज्वाला, और आवाज तो आप सुन रहे थे मेरा ही आवाज, सुरेन भगवान जी का आवाज। साथ ही साथ आप सभी को नौ रात्रि के शुभकामनाएं आप सभी तक पहुंचे। अगला बयान की तरफ बढ़ते एक जबरदस्त गायक हमारे सूरी नाम दिस का आप सुनेंगे, और वो क्या बात है, जबरदस्त गाते हैं, और देखा जाए इन फ्रॉम द बेस्ट बेंचेस हेडन इस जमाने का जबरदस्त म्यूजिक फॉर्मेशन द स्टार्स 2020 का नंबर वन फॉर्मेशन म्यूजिक का हमारे सुरीनाम देश का, तो उन्हीं में ये दोनों जबरदस्त गाते हैं, और दो आवाजें में आप सुनिए ये सुंदर बयान। रम मैं तुझे प्यार मिक्स बाय फारिस बरसाती अंत रायन अब्दुल अजीज, म्यूजिक बाय द स्टार्स फ्रॉम सुरीनाम।

Shabba shabba shabba, from the music pharmacy, the stars uit Suriname. Persoonlijk het hij doodjebberdjeste ganevalle, from the music pharmacy stars. De Greek Faris Bersati al Ryan Abdul Aziska, je pilkulnea chutney mix. 6 minuten rh gya hai, 6:30 bajne mein saathiyo. और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम 11 अक्टूबर 2020 का यह हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तापमान देन हाग शहर का तकरीबन 13 तक 14 ग्राद के दरमियान है और शाम को तो ढेर सारे धूप निकला था, नु इज इट एक्ट बीच ग्रेसिग आन इट वर्ड। तो जहां पर भी है, जहां पर है आप ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सभी को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को भी एक शुभ नवरात्रि पेश है। अगला बयान एक और जबरदस्त मैशअप है, ऑल्सो फ्रॉम द म्यूजिक फरमासी द स्टार्स, और इस बार लाते हैं जबरदस्त गायक मैस्ट्रो रोहित छेदी जी को, और वो सुनाते हैं सुनो सुनो।

क्या बात, ये भी होता है ना यारो लाइफ ब्रॉडकास्टिंग में। तो आप अभी ये अति सुंदर बयान को सुन रहे हैं, रहे थे दोर रोहित छेदी फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी द स्टार्स फ्रॉम सूरीनाम लाइव रिकॉर्डिंग। पूरे 6:30 का वक्त हो चुका है साथियों, अगला बयान जबरदस्त गायक धीरज लाला राम को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को, जरा बच के रहना, हिलाओ मोरे बलमा।

क्या बात है हिलाओ मोरे बलमा। एक बार फिर फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी स्टार्स गाने वाला धीरज लाला राम ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। 4 मिनट गुजर चुका है 6:30 बजकर, तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के जानने वालों के लिए। और इस बार अनपार इन नीदरलैंड्स खात ऊपर दलीफ देना तीवले अर्ज किया है साथियों, लिफ्ट इज द मेस्ट हीलिंग क्राफ्ट इन द वर्ल्ड। निच्स गाट डीपर दान द लिफ्ट। Het heelt niet alleen je lichaam, niet alleen je geest, maar ook je ziel. Wanneer 2 personen voor elkaar gemaakt zijn, is geen tijd te lang, geen afstand te ver en kan niemand ze uit elkaar krijgen. En dat is liefde. Je weet pas dat je leeft, je weet pas dat je leeft als je voelt dat een ander om je geeft.

गाने जो लोग सुन रहे थे और काफी पसंद किया, इसलिए स्पेशल एक बार फिर आप सभी के सेवा में मैं चलाया। 9 मिनट बाकी है साथियों, 7 बजने में अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक सुपरहिट सॉन्ग हैगा, अब देखा जाए कि कॉम्बिनेशन फन रात के सपना मैं रमता जोगी राम सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। मशहूर गाने वाला सूरीनाम देश का मैस्त्रो अमरीश प्रसाद और वनीता वेली के ब्यूटीफुल आवाज में ये चीज सुंदर बयान आप सुनिए। 3-4 म्यूजिशियन मिलकर बजाए हैं, देखा जाए रोशन मुख मिसीर करण मथुरा और डेफन बीट्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल। और आज के हमारे दूसरा अध्याय का आखिरी बयान होगा क्योंकि 8 मिनट बाकी है 7 बजने में।

उन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं तो पूरे सात का वक्त हो चुका है। साथियों, हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं इस वक्त, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अनतिलक बदंत फॉर हेट लॉयस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देन कम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम, सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी की फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलफमांडा टॉट फ्रेडा ऑफ द फोल्ड टेलीफोन नंबर स्टेरेंस कंटोर उर कंटोर 9732247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 9732247। जो भी रेडियो का काम हो ना यारो, डैंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। और इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना, थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना, और हो सके तो ढंढोड़ा भी पीत देना हम लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग यहाँ आप सभी के सेवा में आते जाते रहते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना बना कर हम लोग लाते हैं, आप सभी को सुना देते हैं ना, तो आप लोग सुनते हैं तो हम लोग आते हैं, तो ज़रूर हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना, रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बेंतिनो खिलत फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रू को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। हम लोगों का कराओके टीम जोर तोर से चल रहा है, एंड एल्क लास्ट डोंडरडाग फन द मंथ फन 6 उर सावंस लाइव कराओके ऑफ रेडियो फाउन वार स्टिक ऑफ 7-8 ओमरूपर्स लाइव एंड ओमरूपस्टर्स ओक लाइव फॉर यूली komen zingen. Dus blijf luisteren. Hè? Het is een hype op de radio geworden. En zoals velen zijn wij de primeur. Dus, social lobby lobby and blessings to all of you voor het luisteren.

का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। 3 मिनट गुजर चुका है 7:07 साथियों, तो हर के मुताबिक कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को तो मालूम है नवरात्रि भी आज से शुरू हो गया है, तो इसी उपलक्ष्य में फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर लेडी श्रीमान कुमार गिरोह और श्रीमान शिव चेतन नाटक अल अमरूपर्स मेड वर्कर्स की तरफ से फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का तमाम सुनने वालों को एक शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं। मित हिफिल भक्ति भाव नाटक पूजा पाठ और जो हम लोग के हो पाए हम लोग यहाँ रेडियो पर से जरूर रोजाना कुछ ना कुछ आप सभी को हम लोग सुनाते रहेंगे। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, और अगर आप एक आधा घंटा या एक घंटा का नवरात्रि के प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से, तो जरूर आप तार करें अपनी सीफन तक फिर तक पर तरह आप सभी को एक शुभ नवरात्रि। और ये जय मां काली के अति सुंदर भजन आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम खसोंग दौर महाभक्तराज द ग्रेट सिंगर एंड कंपोजर, हमारे भक्ति भाव का ये बहुत ही जाना पहचाना हुआ कलाकार है हंसराज रघुवंशी जी के मधुर आवाज में ये जय माता काली का भजन आप सुनिए। शुभकामनाएं प्यार मोहब्बत के साथ।

जय माँ काली। ये अति सुंदर भजन आप श्रोताओं सुन रहे थे कसम दौर अनहेल हुय भक्ति वेदांता, जो अपना संगीत सभी मंदिरों में और गुरु द्वारों में जहाँ जहाँ पर भक्ति भावना हो रहे हैं भारत भर में सुनाते रहते हैं। म्यूजिक भाई भरत कमल और अल्फा जिथा रवि चोपड़ा जी का, महान गायक इस जमाने का फीमेल फोकलिस्ट मंजू नौतियाल जी साथ दे रहे थे हंसराज रघुवंशी जी का कोरस के साथ। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, कुछ अलग तरीके के सॉन्ग्स है। Natuurlijk een hele mooie reggae voor jullie allemaal uit de Bollywood film industry. Trending Bollywood reggae hits 2026. Created by AI technology.

Ja, als computers een beetje raar gaan doen, dan weet je hoe laat het kan zijn. Hè? Ja. Maar ik heb hem hoor. Het is een Derbianco Sajaya hai Rahul Nairjine Olikhae Deo Pande Gaya hai Arijit Singh. Wat een bayaan. 7 minuut baki hai saathiyo, 7:30 bajne mein Ravivar ka ratri ka program aap sun rahe hai. Kuch naye naye super hit songs from the Bollywood film industry. एक जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूं, नगमा का बोल है हूर और गाने वाला है इस जमाने का जबरदस्त गायक फहीम अब्दुल्ला जी, जो काफी नाम कमा चुका है. जो गाना वो गाया फिल्म सायारा का टाइटल सॉन्ग फॉर ऑल, वही आवाज आप सुनिए. देखा जाए कंपोज बाय फहीम अब्दुल्ला अरसलान निजामी, लिखा है कैसर निजामी ये अति सुंदर बयान को, और गाने वाले है द मैन हिमसेल्फ फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और कैसर निजामी. तीन आवाजों में अति सुंदर बयान को बयान आया गया है.

Liefde is blij zijn met elkaar, houden van elkaar en trouw zijn voor elkaar. Dat is liefde, Marie-Brie Schroetouw. Toen heb je Aapkoetje aangriseerd, ach, krieg gedichten zo'n regen. Reget hier, Hamari Aatske Hisseke programma. Karigramme. गुजर चुका है साढ़े सात बजकर और अब जरा आप दिल को थाम लीजिए. अब आप सभी के खिदमत में मैं वो आवाज ला रहा हूं जो आजकल दुनिया भर को हिला चुका है अपने गजलों से, अपने स्टाइल से और अपने कंपोजिंग के जरिए. महान कलाकार, गायक, कंपोजर पापों जी को लाते हैं और वो लेकर चलते हैं आप सभी को एक लाइव कॉन्सर्ट जो वो दिया था कलकत्ता शहर में, शाम महफिल बाय द ग्रेट सिंगर पापों. और वो सुनाते हैं आप सभी को गजल रॉक ऑप्शन एक स्टाइल. महान गायक जगजीत सिंह जी का गाया हुआ गजल कौन कहता है, मिल के सुनते हैं. Om van te genieten. Remember, it's a live recording.

शाबाश शाबाश महान गायक द मैन विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इज ज़माने का द ग्रेट मैस्ट्रो पापोन. Remember that it was a live recording gazelle show called Kitame Jo Diya Tha. वक्त भी धीरे धीरे करीब आने लगा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान है मशहूर गाने वाली पंजाब का नेहा बशीन सुनाती है आप सभी को विवाह वाने विवाह के बारे में.

अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अति सुंदर बयान, काफी दिनों बाद नेहा कक्कड़ जी ने कुछ निकाला है और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर शरीफ बेनिस और रजत नागपाल जी का बनाया हुआ है ब्यूटीफुल सॉन्ग, साथ नेहा जी का दे रहे हैं मेन फोकल सिंगर साथ लम जैरत। मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बहना शहनाज जिल, क्या बात है। और गाने का बोल है बेजाफ़।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और गाने का बोल है बेजाफ, अति सुंदर बयान है गाने वाली द ग्रेट नेहा कक्कर जी के ब्यूटीफुल आवाज में। साथ दे रहा था साथ लैम चरत, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय रजत नागपाल और शरीफ बेनेस। क्या बात है, अलग स्टाइल का सॉन्ग आप सुन रहे थे। 8 मिनट रह गया है साथियों, 8

तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप सभी को सेवा करने में, ये यश उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम लेकर, और उसके बाद कुछ नखबे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्रीमान चंद्रसेन गंगा जी। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आने वाले दिनों में फिर मिलते हैं आप सभी से आवाज के जरिए, और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ नवरात्रि। जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ गुनगुनाने को, और इस बार संगीतकारों का शहंशाह और बादशाह हसीनों का पुजारी किशोरदा के याद में कुछ ट्राई करता हूँ।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों की सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमार लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हो या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहां से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहां भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूं आपका सेवक गंगा, और कुल घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ, रोटी कपड़ा मकान, नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं थी मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर दर्द से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

जा, हम तेरे चिराग है जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है यानी खुशकी दिन इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन सस्ते सस्ते का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाए, निकिती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार डुएट हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

Aditya Mukesh, The Heart of Millions फिल्म, मेहंदी लगी तेरे हाथ, और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म लिखी थी तुए का, ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश किए आपके लिए, सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है, जी हाँ, चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरी है ना, जो आजकल चल रहा है उससे पहले की, उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिजदयार शस्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त ख्यार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं, जी नहीं, ये मदर इंडिया का है, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेती सेवन फाइव तक का ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेती सेवन फाइव तक में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया सूरीनाम देश में नेगन तीन सेफ एंड फेफ तक में।

दगा दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्रा दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है रेक रियासी साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद थिएटर में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर मिसेस 55 थिएटर में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो हो इंटरनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने हिंदी फिल्म सही फिल्म

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकती फैफ से का ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आरती बर्मन के साथ पर रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

झूम के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था तो चंडिका तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी। फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं निगतिन फिरन सैफन तक, 1974 का ये गीत इस तरह से है, एवरग्रीन किशोर कुमार।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ नफेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

भूले अफसाने फिर से याद आए, रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ ये गीत हमने पेश किया आपके लिए। उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए ये गीत हमने चलाए थे, आज फिर याद हो गया, हमने सोचा फिर आपको सुना दूँ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है बजरिया के बीच। बस सुनिए लता जी की हाहाकार।

मैं गले लग जाऊं बजरिया के बीच, हमने कहा लता मंगेशकर जी नहीं लेकिन आशा जी, आशा जी की आवाज़ में सुनाया गया फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, ये गीत दरअसल में यहाँ पर लिखा है कि इस एक्ट्रेस की आंखों को देखकर बहुत से बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे, पता नहीं हाँ है या ना है, लेकिन सोचिए ये रायश्री है उस ज़माने की एक्ट्रेस 60s का। बाद में वो कहाँ चली गई, हाँ पता चला अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। रायश्री का ये फिल्म है और एक्टर इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, शायद याद हो जाएगा बाद में मैं, लेकिन चलो वो गीत तो आपको सुनाते हैं जिनकी आंखों को देखकर बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे।

तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, रफ़ी साहेब और लता जी आपको सुनाएं। ये गीत हमने निकाले हैं आप ही के लिए शुभकामना के साथ। लीजिए, आप ही के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

बन के पंछी गाए प्यार का तराना। लता जी और साथी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए, ये एक बहुत पुरानी गीत है। जी हाँ, बहुत पुरानी गीत है, लेकिन इसे जितने बार भी सुना जाए लगता है हाल ही में रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है कि यही लगेगा कि ये गीत हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है।

दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर फिल्म मिस बॉम्बे में से निकालकर हंसराज बहल के साज पर हमने पेश की आप ही के लिए। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुन ही हैं तो चलिए हम आपको मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का एक गीत सुनाते हैं।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए दो होंठ हिले किसी ने मुझे ऐप की कि गंगा, ये गीत तो आप अभी चलाए चुके हैं। हाँ, बात थोड़ी सी सही है, दरअसल में वो भी लता जी की थी। जी हाँ, वो लता जी नहीं, वो भी मुकेश का था और धुन एक ही है लेकिन शब्द अलग है। वो था ऐ प्यार मुझे रो लेने दो और ये था दो होंठ हिले। मुकेश जी की आवाज़ में दोनों गीत गाए गए हैं मुकेश द्वारा, लेकिन शब्द अलग है, धुन वही है। तो यही बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विभिन्न हेल खुए लो इस तरह हमके नाम आखे तो नाम लेवे के बाकी तुरंत कान बहुत तेज है और दिमाग बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, चलो सुनते हैं लता जी और सिर्फ लता जी है।

हाँ, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह फिल्म नौशेरवान आदिल का ये गीत हमने पेश किया है। इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत है।

0: मेरी आवाज़ के पीछे चले आओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश किए। जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं लता जी की आवाज़ में एक बार फिर।
1: शर्मा
0: नहीं रफ़ी,

फिल्म शहनाई निगतिन 64 का ये फिल्म है और हमने पेश की इस फिल्म में से ये गीत निकाल कर। तो हाँ, www.fm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप हैं तो मैं हूँ, और जब आप नहीं होंगे तो फाउन हिंदुस्तानी भी नहीं रहेगा रेडियो। तो आप ही से हम सब हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है इस तरह से।

सनसना सनसना सनसनन लता जी और साथ ही मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये हैं उदित नारायण जी।

उन्हीं नारायण जी की आवाज में हम ये गीत आपको सुनाएं, मेरे लिए तूने तुम्हें रब ने बनाया है, और शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से

हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07.

फन होम टेल हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रात।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैथी मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकी दिन इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने की कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं और आपके धन्यवाद। एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निखती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। दिन से ही फिर तक कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओबी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकालकर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.pinfaunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुनते हैं मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहां भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संगे मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

0: लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं, निगेतन एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ इस तरह से आ रहा है।
1: आई है रे,

खाए रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकितिन फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

लता जी आपको सुनाए अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयाँ में से हैं नहीं गिनती फिर से शस्त्र का जी हाँ नहीं गिनती फिर से शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं एक फिल्म है फिल्म शायद आपने देखे होंगे बहुत पुरानी फिल्म है ये गीत है गाया गया है गीता रॉय जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है स्वार्थवेद फिल्म है शायद आपने देखे होंगे नाम है जग्गा डाकू जिसमें जयराज ने खेले हैं एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है एक्ट्रेस नाम नहीं है क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाए गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेड ट्विंस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी। फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

0: कहां से।
1: वाह क्या दिव्य था रफी साहब और आशा जी की आवाज में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है। जी हाँ रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, हमने कहा ना मैं कौन कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुना ये फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग उफरलीद। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा, लेकिन सेस हेल यंग उफरलीद दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ, गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ, और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिता सेन शास्त्री का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकेदार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकेदार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकेदार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँझ पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के है।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकतिन सेशन सस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली, निकने से का ये गीत। हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है, 454 तक फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निगेति निघ्न शस्त्र का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका सारे भी बनता है, जी हाँ, रेशमी शायद सारी। चलिए